श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र

0: आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है, किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता।
1: सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है।
2: वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है।
1: प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: थारी में पासो लावो जूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारते नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वाग्धरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: ભાઈન બોનું ગીત તો આશું પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણે મન સ્વાગત કરો હું અમારે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ભાઈન બોનું અમે આપને ગીત કે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે આપણે બારિશની બાદ જે પશુ હી એનાને બદલે હુકાચારાની વ્યવસ્થા હળતે કરો અને એને સાથે ભંડારણ હેતે કરી શકો તો અણા વિશે માટે જાણકારી અલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી મનીષજી તો સબ તકી પહેલા આપણે હામરી લાણાની વાત અને મોરકર આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્તે અંજલિ જી
0: સર આપકા બહુત બહુત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહુત બહુત ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જોડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે બારિશ કે બાદ પશુધન હેતુ સૂખે ચારે કા સંગ્રહણ ઓર ભંડારણ હમ કૈસે કરે ક્યુંકિ હમ દેખતે હૈ કે પશુ કે લિયે ચારે કા ભંડારણ કરના હમારે લિયે બહુત જરૂરી હૈ ક્યુંકિ પશુ સે મિલને વાલા જો ઉત્પાદ હૈ વો હમારે રોજમર્રા કે જીવન મેં કામ आता है और आय का प्रमुख स्रोत भी है तो ऐसे में आप सबसे पहले हमें यही बताइए कि इसका क्या महत्व है
1: जी बिल्कुल तो सुनने वाले सभी किसान साथियों अगर हम बात करें तो वागड़ में खेती और पशुपालन ये एक दूसरे के पूरक हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र में अधिकांश किसान वर्षा आधारित और हांगड़ी खेती करते हैं
0: बिल्कुल
1: यहाँ पशुधन परिवार की आजीविका पोषण और आर्थिक सुरक्षा का एक आधार है जिसमें गाय भैंस बैल बकरी और अन्य पशुधन परिवार की जरूरतों के अनुसार दूध कृषि कार्य जैविक खेती और आय के विभिन्न स्रोत उपलब्ध कराते हैं
0: बिल्कुल
1: बारिश के समय खेतों की मेड़ों पर चारागाहों पर जंगल में या खाली पड़ी पहाड़ियों पे जो चारा उगता है वो चारा पर्याप्त तो मात्रा में हमारे पास उपलब्ध रहता है इस समय पशुधन की चराई के माध्यम से भी उनको पर्याप्त आहार मिलता है लेकिन हम देखते हैं कि बारिश खत्म होने के बाद धीरे धीरे हरे चारे की उपलब्धता कम होने लगती है
0: बिल्कुल
1: खेतों में फसल कटने के बाद बड़ी मात्रा में जो कृषि अवशेष बचता है वो भी हमारे पशुधन के लिए सुखा के इकट्ठा किया जाता है ताकि इसके बाद के दिनों के लिए हमें पशुधन के लिए चारे की कोई अन्य व्यवस्था न करना पड़े
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि पशुधन का जो चारा है उसका क्या महत्व है और किस तरीके से संग्रहण और भंडारण करने की जरूरत है यही अब मैं सर जानना चाहूंगी कि बारिश के बाद सूखे चारे का संग्रहण क्यों आवश्यक है
1: बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है किसान साथियों कि बारिश के बाद सूखे चारे का संग्रहण
0: बिल्कुल
1: क्योंकि बारिश जब तक होती है तब तक तो हमारे पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है
0: जी जी
1: और हमें अपने पशुधन के लिए उनके पोषण या खाने के लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता पर जब बारिश खत्म होती है हरा चारा कम होता है या कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है
0: बिल्कुल
1: तो खेतों में उपलब्ध एक तो हमारे जो कृषि अवशेष हैं वो अक्सर खुले में पड़े रहते हैं कई बार उनको कुछ सोच के साथ वैसा ही कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है दूसरी ओर परिवार के पास पशुओं की संख्या कहीं ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है और उसमें जो चारे की कमी पैदा होती है इस कमी को पूरा करने के लिए हमें बारिश के बाद सूखे चारे का संग्रहण जरूरी हो जाता है
0: बिल्कुल
1: यदि बारिश के बाद

0: उपलब्ध चारे को समय पर एकत्रित करके सुरक्षित रखा जाए तो हम पशुधन के लिए कई महीनों का चारा सुरक्षित रख सकते हैं। गर्मी और सूखे मौसम में चारे की कमी की समस्या से निपटा जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: पशुओं को केवल चराई पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बाजार से चारा खरीदने पे होने वाले खर्च से बचा जा सकता है और खेतों में जो उपलब्ध कृषि अवशेष हैं या फसल अवशेष हैं उनका बेहतर उपयोग हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: यही चारा पशुओं के पोषण और उत्पादन को बनाए रखने में भी हमें मदद करता है और परिवार को कठिन मौसम में अपने पशुधन के लिए पोषण व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाता है।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने ये बताया कि किस तरीके से बारिश के मौसम के बाद हमें किस तरीके से पशु का जो आहार है उसका संरक्षण करने की जरूरत है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि वागड़ में सूखे चारे के कौन कौन से स्थानीय स्रोत हैं जिन्हें हम हमारे पशुओं के लिए सूखे चारे के तौर पर रख सकते हैं।
0: वागड़ में यदि देखा जाए तो किसान साथियों हमारे पास चारे के कई स्थानीय स्रोत हैं, क्योंकि वागड़ की पारंपरिक खेती व्यवस्था में पशुओं के लिए चारा केवल फसल से नहीं मिलता है। खेत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के अवशेष तो इसमें शामिल है ही, इसी के साथ खेत की मेड़ों पर उगने वाला चारा, जंगल में मिलने वाला चारा, पहाड़ियों या खाली जमीन पे उगने वाली घास और स्थानीय रूप से मिलने वाली अन्य घास भी हमारे महत्वपूर्ण संसाधनों में शामिल है। अगर हम देखें तो मक्का या अन्य फसल के अवशेष, ज्वार या बाजरा की चरी जो अक्सर बारिश की खेती के बाद नमी में ही पैदा हो जाती है, गेहूं का भूसा, धान के अवशेष, हमारी दलहनी फसलों के अवशेष और स्थानीय रूप से मिलने वाला चारा,
1: बिल्कुल
0: ये सारा बारिश के बाद हमें उपलब्ध हो जाता है। इसको समय पर काट कर सुखा लिया जाए और उचित तरीके से यदि इनका सुरक्षित भंडारण किया जाए तो हमें आने वाले समय के लिए कभी चारे की कमी नहीं होगी।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वागड़ में स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे सूखे चारे के स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें चारे की कमी नहीं होगी, लेकिन अब मैं यही जानना चाहूंगी कि सूखे चारे को सुखाने की सही प्रक्रिया क्या है, क्योंकि चारा तो किसान भाई बहन इकट्ठा कर लेंगे लेकिन अगर उन्हें सही प्रक्रिया का ध्यान नहीं रहेगा तो वो चारा खराब होने की संभावना भी हो सकती है, तो ऐसे में इसकी सही प्रक्रिया क्या है जो हमारे किसान भाई बहनों को पता होनी चाहिए।
0: तो किसान भाइयों, चारा सुखाने के लिए हमें जो सबसे जरूरी चीजें ध्यान रखना है उसमें ये है कि साफ और सूखा स्थान हमें चारा सुखाने के लिए चुनना चाहिए। इसके लिए खलिहान हो सकता है, आंगन हो सकता है, चबूतरा हो सकता है, इन जगहों पे हम चारे को सुखा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: चारे को सीधे गीली मिट्टी पर नहीं फैलाना है या गीली जगह पे नहीं फैलाकर सुखाना है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है।
1: बिल्कुल,
0: चारे को सुखाने के समय हमेशा पतली परत में फैलाना चाहिए, चारे को लगातार निश्चित समय के बाद पलटाते रहना चाहिए, कहीं भी बारिश या ओस की संभावना हो तो उससे चारे को बचाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: यानी कि कम से कम शाम के समय या तो चारे को सुरक्षित स्थान पर वापस रख देना चाहिए अगले दिन सुखाने के लिए।
1: बिल्कुल,
0: अगर चारे को ढका जाता है तो ये ध्यान रखें कि उसमें हवा आती जाती रहे, उसे पूरी तरह से बंद न कर दें।
1: बिल्कुल,
0: इस तरह से पूरी तरीके से सूखने के बाद हम उसका सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। सूखे चारे का सुरक्षित भंडारण करने से ये लंबे समय तक हमें हमारे पशुधन की पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर हम बहुत छोटे में बात करें तो चारा भंडारण के तीन सिद्धांत होंगे, नमी से बचाव, गीली जमीन से दूरी और पर्याप्त हवा का आवागमन।
1: बिल्कुल,
0: तो चारे को सीधे जमीन पर भंडारित करने के बजाय लकड़ी, बांस, पत्थर या अन्य किसी सामान से बने ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। हमारे यहाँ एक पारंपरिक व्यवस्था है जिसको हम डागला बोलते हैं, तो डागले पे यदि इसका भंडारण करते हैं तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि इस चारे को सुखाने की प्रक्रिया क्या है जिसका हमें पता होने की जरूरत है, यही चारा सुरक्षा को पशुधन स्वराज से कैसे जोड़ा जाया जा सकता है?
0: किसान भाइयों, वागड़ की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारा पशुधन स्वराज केवल पशु पालना नहीं है, इसका अर्थ है परिवार अपने पशुधन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे चारा, पानी, देखभाल, स्वास्थ्य और प्रबंधन के लिए स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आत्मनिर्भर बने।
1: बिल्कुल,
0: इसी दृष्टि से बारिश के बाद सूखे चारे का संग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: यदि परिवार अपने खेत का चारा पहचाने, समय पर उसे इकट्ठा करें, सही तरीके से सुखाए, सुरक्षित रखें और पशुधन की आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करें।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ यदि जरूरत से ज्यादा चारा हमारे पास है तो हम अपने पड़ोसी परिवार के साथ भी उसे जरूरत पड़ने पर बांटें।
1: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ये बताया है कि चारे का उचित तरीके से भंडारण करना क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ભાઈન બોનો સિમકી એવડે આપણે વ્યાસમાં મનીષજી જોડે તક હતા અને એના માધ્યમ થકી આપણે ઘણા આકારની વાતને જાણ્યું કે હુકા ચારાનું ભંડારણ કરવું આપણે બદલે કેમ જરૂરી હૈ, આની પ્રક્રિયા હું હૈ ને કયા કયા સ્ત્રોત હૈ આપણે વાગડ ક્ષેત્રમાં જેને માધ્યમ થકી આપણે હુકા ચારાની વ્યવસ્થા કરી શકો। આશા કરો હો કે આ હંગરી વાત આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટો પડવાનું, તો સૂટો તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટો।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
4: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपने करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमर अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, बचपन सिर्फ पढ़ाई और किताबों तक सीमित नहीं है। बच्चों का स्वस्थ विकास तभी संभव है जब पढ़ाई के साथ उसके दिन में खेलना, पैदल चलना, साइकिल चलाना और दूसरी शारीरिक गतिविधियां भी शामिल हो। आजकल मोबाइल और स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण बच्चों का बाहर खेलना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना कम होता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम बच्चों को छोटी उम्र से ही सक्रिय रहने की आदत डालें। इसी विषय पर सही और उपयोगी जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ भी अवश्य जुड़ेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले विषय से रूबरू करा ही दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के पोषण के स्वास्थ्य, उनकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी क्यों जरूरी है। विषय विशेषज्ञ से आज हम जानेंगे कि बच्चों के लिए पैदल चलना, साइकिल चलाना, खेलकूद क्यों जरूरी है, रोज कितनी शारीरिक गतिविधियां होनी चाहिए और माता पिता बच्चों को सक्रिय रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। बातें ढेर सारी रहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से, तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं विषय विशेषज्ञ की बातों को। सर नमस्कार।
1: हाँ जी
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वागड़ रेडियो परिवार में। सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: थैंक यू मैडम, आपने आपके इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। मैं धनेश्वर मेहरा, जिला खेल अधिकारी बांसवाड़ा हूँ और मैं भारतीय तीरंदाजी टीम का कोच भी रहा हूँ इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि किस तरीके से हम बच्चों को खेल कूद के साथ पोषण के महत्व के बारे में बता सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बच्चों का जो खान पान है वो अच्छा होने के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां होना भी बहुत जरूरी है, तो आप हमें यही बताइए कि बच्चों के लिए पैदल चलना कितना जरूरी है।
1: जी, बच्चों के लिए पैदल चलना बहुत ही फायदेमंद है। यह एक आसान, सुरक्षित और बिना किसी विशेष उपकरण के शारीरिक गतिविधि है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार का उनको उपकरण नहीं चाहिए, ना वो किसी प्रकार का खर्च है और उससे फिर ये अगर पैदल चलते हैं तो एक ये इनकी शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: बच्चों को पैदल चलने के

0: प्रमुख फायदे अपन कहें तो उसमें मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है,
1: बिल्कुल
0: पहला अगर चीज देखें। उसके बाद है हृदय और फेफड़ों की क्षमता को बेहतर बनाता है। अभी आपने देखा 2 साल पहले कितने भयंकर बीमारी और ये जो महामारी आई थी, तो उसमें जिनके फेफड़े अगर कमजोर रहे तो वो उनका अपन बिना कहे कह सकते हैं उनकी क्या स्थिति बनी है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा अपन कहे कि इनके वजन जो होता है, वेट है, वो नियंत्रण रखने में मदद करता है।
1: बिल्कुल।
0: चौथा पॉइंट कहे तो एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य में अच्छा है। पांचवी चीज अगर अपन देखें तो नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। अब अगर कहते हैं नींद अगर पूरी है तो उसका जितनी भी जो दिनचर्याएं बनी हुई है वो सारी बहुत अच्छे से कर सकते।
1: बिल्कुल सर।
0: हाँ, इसी चीज जो मेन अगर इसमें कहें तो रक्त संचार और का भी सक्रिय रहता है। जैसे नॉर्मल जैसी चीजें हैं तो रक्त संचार भी होता रहता है।
1: जी हाँ। तो सर जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चों के लिए पैदल चलना कितना जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि साइकिल चलाने से क्या स्वास्थ्य लाभ हमारे बच्चों को मिल सकते हैं।
0: साइकिल देखिए ये तो बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के लिए लाभ ही है, क्योंकि साइकिल चलाना बच्चों और बच्चों के साथ बड़ों दोनों के लिए बहुत लाभदायक है।
1: जी जी।
0: जैसे बच्चों की बात करते हैं तो वही पैरों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। जब साइकिल का पैदल चलता है तो उसकी मांसपेशी और पैरों दोनों की जो है उसको मजबूत करता है। उसके वही चीज वापस पैदल में आप मैंने बताया था कि हृदय और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है।
1: बिल्कुल।
0: वजन आदि इत्यादि को भी वो नियंत्रण में रखता है। शारीरिक ताकत और सहन शक्ति बढ़ाता है। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं। साइकिल चलाना आप बहुत कम देखने मिलता है, लेकिन ये देखिए इसके साथ साथ शरीर को संतुलन और तालमेल बनाए रखता है। साइकिल चलाते दो पहियों के ऊपर चलते हैं तो साइकिल चलती है तो उसका तालमेल एकाग्रता और उसको संतुलन बनाए रखता है। तनाव कम करने और मन को प्रसन्न करने में यह भी मदद करता है।
1: बिल्कुल सर। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों को मोबाइल छोड़कर बाहर खेलने के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं।
0: ये आज की जो ऐसी स्थितियां बन गई है कि बच्चे टीवी मोबाइल के सामने ऐसे वो हो जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इन बच्चों के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे मोबाइल है अब इसको दूर करना है, उससे हटाना है बच्चे को, तो बच्चे की पसंद का खेल चुने। ऐसा बच्चे को आप वो मोबाइल चलाता है चलाते चलाते अपन विचार करें ये क्या मोबाइल में खेल रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसे ही थोड़ी सी उसकी पसंद को देखें। जैसे क्रिकेट आज हर जगह खेलते मिल जाते हैं, फुटबॉल, साइकिल, तैराकी, कबड्डी, तीरंदाजी, अन्य जैसे इस तरह के खेल जो उसको एक पसंद की चीज मिले। तो अगर क्रिकेट का छोटा सा बैट और उसको बॉल दे दी तो ये लो, तो बच्चा तुरंत मोबाइल से हटेगा और उस क्रिकेट और सामने वाले आपने बॉल फेंकी उस बॉल के साथ खेलना शुरू कर दे।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा जैसे कि ये क्या अपन कहें, क्योंकि माता पिता का तो बहुत बड़ा रोल इसके साथ में रहता है, तो माता पिता खुद इस बच्चे के साथ उन वो इस तरह के बच्चों की खेल के साथ वो खुद जुड़ जाए एक बार। तो
1: बिल्कुल।
0: तो ये देख के अगर वो उसके माता जी है, माता जी बच्चे के साथ अरे ये लो ऐसा खेलना है, तो वो मोबाइल की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देगा और निश्चित जो माँ कह रही है जैसे बॉल फेंक रही है उसको पीछे दौड़ेगा, उसके पीछे खेलने के लिए राजी हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से अगर छोटे छोटे उसके पसंद के खेल आप उस खेल को ऐसे नहीं माने कि उसको खेल में ऊंचाई तक बोले जाए, नहीं नहीं नहीं उसके पसंद है बस, इसलिए बॉल के पीछे दौड़ना है तो वो दौड़ना शुरू कर देगा, खेलना है तो खेलना शुरू करता है। तो इस तरह का करके और उसको मोबाइल से हटके और खेल की तरफ बढ़ाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। तो सर जैसा कि हम बहुत अच्छी बातें कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं, तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो खेल और शारीरिक गतिविधियां कम करने लगे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है
0: इसमें? अब देखिए एक शारीरिक गतिविधि ये जितनी सक्रिय रहेगी, तो इसको कम से कम अगर मान ले 3 से 4 साल का बच्चा है तो उसको कम से कम अपन ये माने कि 60 मिनट तक तो कुछ न कुछ ऐसी शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए जैसे घंटा भर वो ऐसी शारीरिक गतिविधि करें जैसे इसको खुद को पता नहीं चल पाए मैं क्या क्या कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: कहाँ से किधर दौड़ रहा हूँ, कहाँ से किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसको कुछ ऐसी चीजें, छोटे बच्चे होते हैं उनको सिर्फ साइकिल चलाने का बहुत शौक होता है, पीछे वो गिरे नहीं, इसके लिए दोनों साइडों में वो टायर लगा दिए, उसको ला के दे दी कुछ इसको और अच्छे डेकोरेटिव बना के दे दिया, तो उसको वो चीज अपने आप ऐसी वो करते हुए घंटा भर कैसे निकल जाएगा शारीरिक गतिविधि करते करते, उसको खुद को पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल जी सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम होने के पीछे कारण क्या है और किस तरीके से बच्चों को शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, यही सर बच्चे के शारीरिक विकास में खेलकूद के साथ संतुलित पोषण की क्या भूमिका है?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि खेल है, अब वो बच्चा सपोज करो घंटा भर कंटिन्यू इधर से उधर खेल रहा है, तब उसको ये पता नहीं रहता है कि मुझे अपने आवश्यकता अनुसार कितना क्या विटामिन अपने शरीर में गया।
1: बिल्कुल,
0: तो उस समय ये ध्यान में रखे कि जैसे एक पेय पदार्थ है मेन चीज, उस समय तो ज्यादा कुछ चीज नहीं, पेय पदार्थ है तो पेय पदार्थ के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें जैसे ग्लूकोन डी हो गया, नींबू पानी हो गया, इस तरह की जो है वो उसको समय अनुसार अगर समय समय पर मिल जाता है तो उसका शरीर जिस तरह का वो शारीरिक गतिविधि कर रहा है, अपने में क्षमता है और जो वर्क कर रहा है उसको वापस उसी अनुसार बनाए रखने के लिए इस तरह की चीजें अगर उसको मिल जाती है
1: जी जी,
0: तो शरीर के अंदर में और ज्यादा ऊर्जावान वो बनता जाएगा और जो कुछ खेलेगा वो और अच्छा सा खेल सकेगा।
1: बिल्कुल, तो सर खेलने से पहले और खेलने के बाद बच्चों को किस तरीके का पौष्टिक भोजन देना बेहतर रहता है?
0: ये बहुत ही खेलने से पहले खेलने के बाद में, अब अगर खेलने से पहले है उसको बहुत लाइट वेट का आहार दिया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: लाइट वेट का इसलिए कि उसकी जो गतिविधि है खेल की गतिविधि उसमें अगर उससे ज्यादा दे दिया तब उस गतिविधि को फर्क पड़ जाएगा, वो अच्छा सा कर नहीं पाएगा, इसलिए ये ध्यान रखा जाए कि उसको कम मात्रा में लेकिन शरीर की उसमें जो आवश्यकताएं हैं शारीरिक वर्क जो करेगा उसमें कुछ उसको आवश्यकताएं वो पूर्ति हो जाए इतना कर दिया जाए, उसके बाद में जब वो खेल खेलना बंद करता है बंद करने के बाद में फिर उसको जितना अपन ने खेल शुरू करने से पहले दिया था उससे अधिक मात्रा में जितने उसको आवश्यकता लगती है, हाँ ये अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया अब ये खाना मेरे लिए उचित होगा, तो उसको थोड़ा सा पहले अपन ने लिक्विड वगैरह इस तरह की चीजें दी थी,
1: बिल्कुल
0: अब उसके बाद में उसको थोड़ा सा जो शरीर के लिए जैसे कितनी कैलोरीज उसकी बर्न हुई है उस कैलोरीज को वापस बनाए रखने के लिए कितनी चीजें, ये थोड़ा सा जो अपना इसका न्यूट्रिशन है उनसे थोड़ा सा राय लेते हुए शरीर को आवश्यकता जितनी है वो चीज उसको मिल जाए।
1: बिल्कुल, तो सर क्या पर्याप्त पोषण के बिना केवल खेलकूद से बच्चों का सही शारीरिक विकास संभव है?
0: नहीं, उसको दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। उसको उस मात्रा में जिस मात्रा में उसको आवश्यक है पौष्टिक आहार उसको देनी होगी, अगर नहीं देते हैं तो वो फिर एक छोटा सा रूप लेते हुए एक शरीर के अंदर में उसकी बीमारी का घर भी बनता है, क्योंकि उसको अगर पौष्टिक आहार नहीं तो जितने दिन खींच पाएगा उतनी खींचेगा, उसके बाद में जो उसका क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: तो तब ये पता नहीं चल पाएगा कि ये पहले तो खूब अच्छा सा ये सारी गतिविधियां कर लिया करता था आज उतनी क्यों नहीं कर पा रहा, तो उसका ये है कि सही मात्रा में पौष्टिक नहीं मिलना है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए न्यूट्रिशन से राय लेते हुए जितनी आवश्यकता है जितना वर्क कर रहा है उसके अनुरूप उसको मिलना आवश्यक।
1: बिल्कुल, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि ग्रामीण बच्चों के लिए स्थानीय और आसानी से उपलब्ध कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो उनकी ऊर्जा और पोषण की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं?
0: सबसे पहले तो ये है कि ग्रामीण बच्चों को आज ये जो है ये सारी अगर अपन कहें कि बहुत अच्छे से पौष्टिक आहार मिल जाए वो मिल जाए वो ये सारी चीजें नहीं मिल पाती है, इसलिए तो कहते हैं कि ग्रामीण बच्चों और शहरी में थोड़ा अंतर है, वो क्यों दिखता है, वो इसलिए कि ग्रामीण बच्चा होता है उसको अगर पैदल चलने के लिए कहें तो 5-7 किलोमीटर तो उसको कोई असर ही नहीं पड़ता है, अरे ये तो बहुत इजी हो जाता है। इसके साथ में इसका जो औषध जो अपन उसको खाने का ये जो है वो थोड़ा सा किसी न किसी रूप में सुधार हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो अगर इतना सुधार हो जाए तो वो शारीरिक दृष्टि से शहर के बच्चों से भी काफी अच्छा वर्क करने लगता है।
1: बिल्कुल, तो सर यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों में कमजोरी या खून की कमी होने पर उनकी खेल गतिविधियां और शारीरिक क्षमता पर क्या असर पड़ता है।
0: ये मैडम आपको बताएं कि अगर बच्चे के शरीर में खून की कमी या इस तरह की रहती है तो वो जिस किसी भी खेल की तरफ में है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है।
1: बिल्कुल।
0: और ये खून की कमी जैसी बीमारियां है ये आती है, वो तभी आती है जब उसको सही मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। अगर सही मात्रा में पौष्टिक आहार मिले और उतना ही ये वर्क हो रहा है तो उस कार्य को बहुत अच्छे से और अच्छी तरीके से करते हुए आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: ये चीजें आती है वो तभी आती है कि उसका शारीरिक वर्क तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसके अनुरूप उसको
1: पोषण नहीं मिलता है।
0: पोषण नहीं मिलने से ये चीजें।
1: जी सर, तो जैसा कि सर आपने हमें बहुत अच्छी बात से अवगत करवाया है कि पैदल चलना, साइकिल चलाना, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ बचपन का क्या महत्व है और किस तरीके से हमारे जो बच्चे हैं वो शारीरिक गतिविधियों के साथ पोषण का भी ध्यान रख सकते हैं। यही हम देखते हैं कि इसमें माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो माता पिता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वे बच्चों की शारीरिक गतिविधि के साथ पोषण का भी ध्यान रख सके।
0: मैं सभी बच्चों के, खिलाड़ियों के माता पिता को मेरा प्रणाम करते हुए मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि स्वस्थ बच्चा सशक्त समाज। ये एक ही लाइन का ये जो है, अब इसमें क्या है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ नियमित गतिविधि और खेलकूद भी अत्यंत आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अगर अत्यंत आवश्यक इतना आपने कह दिया, अब ये बच्चा इन चीजों में कैसे सक्रिय रहेगा। तो इस जगह पे माता पिता को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा सही नींद ले पा रहा है कि नहीं है, वो शारीरिक जो वर्क कर रहा है उसके अनुसार उसको पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे अभी जो उससे पहले आपने पूछा था मोबाइल के लिए उसको कैसे दूर करें, तो ऐसी स्थिति में वो है तो माता पिता को बच्चे के हरकत में बच्चे के साथ मिलके इन चीजों से कैसे दूर रखेंगे। ये माता पिता जब साथ में जुड़ जाएंगे ना तो ये चीजें बच्चा अपने आप दूर रखने लग जाएगा और अच्छा एक स्वस्थ जो बच्चा है उसकी ओर वो बढ़ेगा। तो माता पिता से मैं यही दोबारा कहना चाहूंगा कि बच्चे को उसका विशेष ख्याल रखें, उसकी हर गतिविधि को ध्यान में रखें कि वो क्या कर रहा है, और अगर उसको यूं लगता है कि इस जगह पे ये गलत जगह पहुंच रहा है तो उसको साथ में मिलके और अच्छाइयों की तरफ में उसको ले जाने में विशेष महत्व रखता है वो रखें।
1: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू आपने आपके इससे मुझे जोड़ा।
1: श्रोता साथियों, अभी हम सब ने विशेषज्ञ से जाना कि बच्चों के स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए शारीरिक गतिविधियां कितनी महत्वपूर्ण है। पैदल चलना, साइकिल चलाना, खेलना या रोज कुछ समय बाहर सक्रिय रहना, ये छोटी छोटी आदतें बच्चों के विकास में बड़ा योगदान देती है। बच्चों को हर समय मोबाइल या स्क्रीन में व्यस्त रखने के बजाय उन्हें खेलने, चलने और अपनी पसंद की शारीरिक गतिविधि करने का अवसर दें। साथ ही माता पिता खुद भी सक्रिय रहकर बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। याद रखिए कि स्वस्थ आदतों की नींव बचपन में ही रखी जाती है। आज बच्चे जितना सक्रिय रहेंगे उतना ही स्वस्थ और आत्मविश्वासी होकर आगे बढ़ेंगे। श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो केवल संवेदनशीलता से नहीं बल्कि समानता, सम्मान और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है कशिश, युवा बने समावेशी समाज की आवाज, सांकेतिक भाषा से समान अवसर तक।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन केवल भविष्य नहीं, आज के समाज के सक्रिय भागीदार भी है हमारे युवा साथी। उनके पास सोच बदलने, नई पहल शुरू करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति भी है।
0: बिल्कुल
1: समावेशी समाज का अर्थ है श्रोताओं, ऐसा समाज जहां व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, सुनने बोलने की क्षमता, भाषा, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य व्यक्तिगत परिस्थिति के कारण उसके अवसर सीमित न हो।
0: जी हाँ,
1: जहां हर व्यक्ति को सम्मान, शिक्षा, रोजगार, संवाद और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल,
1: और इस बदलाव में युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर युवा साथियों से हमारी ढेर सारी बातें होंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे दोस्तों को हम यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे पहले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, कहा गया है कि समाज तब आगे बढ़ता है जब विकास की राह में कोई पीछे न छूटे।
1: बिल्कुल।
0: और आवाज तब सशक्त बनती है जब वह हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसकी आवाज अलग तरीके से व्यक्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगे मैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से तो रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि युवा अगर समावेशी समाज की आवाज बने और सांकेतिक भाषा किस प्रकार से उनके लिए समान अवसर खोज सकती है। अगर बात करें जागृति जी कि समावेशी समाज होता क्या है, तो दोस्तों समावेशी समाज यानी कि ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने की सोच होती है।
1: बिल्कुल।
0: सिर्फ ये कहना कि सब बराबर है पर्याप्त नहीं है। असली समानता तब दिखाई देती है जब हमारे स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान और साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार वास्तव में सभी के लिए सहज और सुलभ हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए युवा साथियों, कि यदि किसी श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए किसी कार्यक्रम में जानकारी केवल बोलकर दी जा रही हो तो वह व्यक्ति उस जानकारी से पूरी तरह जुड़ नहीं पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वही जागृति जी, अगर वहाँ सांकेतिक भाषा या लिखित जानकारी की व्यवस्था होगी तो वही व्यक्ति भी कार्यक्रम में बराबरी से भाग ले सकता है।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि दोस्तों समावेशन का मतलब किसी को अलग से सुविधा देना भर नहीं है। इसका मतलब है कि व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि समावेशी समाज आखिर है क्या, यही बात करते हैं। सांकेतिक भाषा एक अलग भाषा नहीं, संवाद का एक मजबूत माध्यम है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, हम में से बहुत से लोग सांकेतिक भाषा के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसे सीखने या समझने की कोशिश कम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कशिश की सांकेतिक भाषा हाथों के संकेत, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों के माध्यम से संवाद करने का माध्यम है। बहुत से बधिर और कम सुनने वाले लोग अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं कल्पना कीजिए कि किसी युवा को सांकेतिक भाषा का थोड़ा सा ज्ञान है, वो किसी बधिर व्यक्ति से सामान्य बातचीत करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वो पूरी तरह धारा प्रवाह न हो, लेकिन उसका एक छोटा सा प्रयास सामने वाले व्यक्ति को एहसास करा सकता है कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारी बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यही तो समावेशी की शुरुआत है। श्रोताओं, युवाओं को सांकेतिक भाषा सीखने को केवल एक अतिरिक्त कौशल के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये संवाद की एक नई क्षमता और सामाजिक संवेदनशीलता का माध्यम भी बन सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो समाज को भी हम बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि जागृति जी, युवा किसी भी समाज में बदलाव के सबसे सक्रिय वाहक हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास तकनीक है, सोशल मीडिया है, नए विचार है और सबसे बड़ी बात नई चीजें सीखने और अपनाने की क्षमता भी है। आज युवा अगर यह तय कर ले कि वे अपने आसपास के लोगों को उनकी क्षमताओं या सीमाओं के आधार पर अलग नहीं करेंगे तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: युवाओं मान लीजिए कि किसी कॉलेज में एक छात्र है जो कि बधिर है, अगर उसके साथ ही उसकी ओर ध्यान ही न दे तो वह सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करेगा। लेकिन अगर कुछ युवा उसके साथ संवाद करेंगे, सांकेतिक भाषा के माध्यम से सामान्य संकेत उसे सिखाएंगे, नोट्स ले और महत्वपूर्ण जानकारी उससे साझा करे और उसे गतिविधियों में शामिल करे तो वातावरण पूरी तरह बदल सकता है। जागृति जी
1: बिल्कुल कशिश,
0: इसलिए समावेशी समाज की शुरुआत हमेशा किसी बड़ी योजना से हो ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी इसकी शुरुआत एक छोटे से संकेत, एक छोटी सी मुस्कान, एक मदद और एक सम्मानजनक व्यवहार से भी हो सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ समान अवसर का मतलब भी बहुत जरूरी है। यानी कि समान अवसर का अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसी सुविधा दी जाए।
0: बिल्कुल।
1: बल्कि इसका अर्थ ये है श्रोताओं कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का उचित अवसर मिले। हम देखते हैं कशिश की, एक विद्यार्थी को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए किताबें चाहिए होती है।
0: जी हाँ।
1: किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाई समझने के लिए अतिरिक्त दृश्य सामग्री या सांकेतिक भाषा की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, सीखना और आगे बढ़ना। इसीलिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना असमानता नहीं है, बल्कि ये वास्तविक समान अवसर की दिशा में कदम है।
0: बिल्कुल।
1: युवाओं को इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों, हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार समावेशी समाज की आवाज बन सकते हैं और सांकेतिक भाषा के समान अवसर हमारे लिए क्या है ये हम जान रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें जागृति जी आगे भी ऐसे ही युवा साथियों से हमारी बनी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हमारे दोस्तों को हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है संवाद सबका अधिकार समावेशी समाज की ओर कदम को लेकर।
1: बिल्कुल, तो यही जागृति से बात करें कि संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता, संवाद का अर्थ है अपनी बात को सम्मान पूर्वक रखना और सामने वाले की बात को धैर्य पूर्वक सुनना।
0: बिल्कुल,
1: जब दो व्यक्ति अपने विचार अनुभव और समस्याएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो उनके बीच समझ पड़ती है और यही समझ परिवार को मजबूत करती है, गांव को जोड़ती है और समाज में विश्वास पैदा करती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सच्चा स्वराज भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है। स्वराज का अर्थ केवल शासन व्यवस्था में भागीदारी नहीं बल्कि अपने जीवन, अपने गाँव, अपने समाज से जुड़े निर्णयों में लोगों की भागीदारी भी है। जब गांव का हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, सवाल पूछ सकता है, सुझाव

0: ले सकता है और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा बन सकता है, तभी स्वराज की भावना मजबूत होती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं, किसी की उम्र अलग है, किसी का अनुभव अलग है, किसी की जरूरत अलग है और किसी की सोच अलग हो सकती है। यही विविधता समाज को सुंदर बनाती है, लेकिन विविधता के साथ साथ एक दूसरे को समझने की जिम्मेदारी भी आती है। श्रोताओं, कई बार समस्या इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि हम समय रहते बातचीत नहीं कर पाते।
0: बिल्कुल,
1: परिवार में छोटी सी गलतफहमी संवाद के अभाव में बढ़ सकती है। गांव में किसी मुद्दे पर अलग अलग राय हो सकती है अंजलि, लेकिन बातचीत के माध्यम से समाधान भी खोजा जा सकता है। साथियों, संवाद हमें ये सिखाता है कि असहमति का अर्थ दुश्मनी नहीं है। हम किसी व्यक्ति की बात से सहमत न होते हुए भी उसकी बात सुन सकते हैं और उसके सम्मान को बनाए रख सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हर व्यक्ति की आवाज महत्वपूर्ण है। समावेशी समाज की पहचान यही है कि उसमें किसी व्यक्ति की आवाज केवल इसलिए नजरअंदाज न हो कि वह कमजोर है, गरीब है, कम पढ़ा लिखा है या दूर दराज के क्षेत्र से आता है या अपनी बात रखने में संकोच करता है।
1: बिल्कुल,
0: एक किसान के पास खेती का व्यावहारिक अनुभव है, एक बुजुर्ग के पास वर्षों का जीवन अनुभव है, एक युवा के पास नई तकनीक और नए विचार हो सकते हैं, बच्चों के पास अपने आसपास की दुनिया को देखने का अलग नजरिया होता है, महिलाओं के अनुभव और सुझाव भी परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए विकास की चर्चा जो है वो तब पूरी होती है जब अलग अलग वर्गों की आवाज उसमें शामिल हो।
1: जी अंजलि, क्योंकि संवाद की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती बल्कि अपने घर से होती है। परिवार में जब बच्चे अपनी बात खुलकर कह पाते हैं और बड़े उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। घर में अगर हर निर्णय केवल एक व्यक्ति की इच्छा से हो और बाकी सदस्यों की बात न सुनी जाए तो धीरे धीरे दूरी बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात सुनते हैं तो निर्णय अधिक समझदारी से किए जा सकते हैं। बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर देना, बुजुर्गों के अनुभव सुनना और परिवार के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं को समझना, ये छोटे कदम परिवार में संवाद की संस्कृति बनाते हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, गांव केवल घरों का समूह नहीं है, गांव एक समुदाय है जहां पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, स्वच्छता और रोजगार जैसे अनेक विषय सामूहिक जीवन से जुड़े होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इन विषयों पर यदि लोग आपस में चर्चा करें, समस्याओं को सामने रखें और समाधान खोजने में भागीदारी करें तो गांव की व्यवस्था मजबूत होती है। ग्राम सभा इसे लोकतांत्रिक संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: बिल्कुल,
0: ग्राम सभा में गांव के लोग स्थानीय समस्याओं और विकास से जुड़े विषयों पर अपनी बात रख सकते हैं। जब लोग बैठकर चर्चा करते हैं, अलग अलग विचार सामने आते हैं और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया मजबूत होती है। यही सच्चे स्वराज की भावना है कि निर्णय हमारे बारे में हो तो हमारी आवाज भी उसमें शामिल होनी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने बताया कि गांव की मजबूती में संवाद की क्या भूमिका होती है, यही बात करें संवाद और समान अवसर की, तो साथियों समावेशी समाज में केवल कुछ लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलता, बल्कि कोशिश ये होती है कि हर व्यक्ति तक संवाद का असर पहुंचे।
0: बिल्कुल,
1: जो व्यक्ति अपनी बात आसानी से कह सकता है उसे दूसरों को भी बोलने का अवसर देना होगा। बैठक में केवल कुछ लोग लगातार बोलते रहते हैं, बाकी लोग चुप बैठे रहते हैं तो संवाद अधूरा रह जाता है। किसी बैठक में शांत रहने वाले व्यक्ति से भी उसकी राय जानना, बुजुर्गों की बात सुनना, युवाओं के सुझाव लेना और बच्चों की जरूरतों को समझना, ये सारी समावेशी सोच के उदाहरण हैं।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं कि संवाद सबका अधिकार, समावेशी समाज की ओर कदम को लेकर, ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम में यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुंद, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुंद हूँ था का
0: अरे जागृति बुंद आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुंद एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुंद हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुंद आपड़े भाई बुंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुंद आपड़े भाई बुंदो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल रह हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो वे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा डंगा, पानी ने बचा डंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
3: हो वे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
2: हो वे आज नाना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो घनी बोने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
5: तो हमरो बोनो, अरे सब समस्या नो समाधान आपड़े कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जई वरे अधिकार हंग्र अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बहनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम घूमर हमरवारी अमर हित्ते बोने ने आपनी बोन मनीषा ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। होवे भाइयों बोनो आप सब हमले रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर हूं हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: होवे भाइयों बोनो लेने हाजिर थी गयो हो हमारे टाइम माते कार्यक्रम घूमर ने लेने एक नवा विषय ने हाथे। मनीषा बोन आज भी अपने बात करवा जा रहे हो अपने गाँव अपनी संस्कृति ने अपने जीवन तक ही जुड़ियो एक एवो विषय जे अपनी परंपरा भी है हुनर भी है रोजगार की संभावना भी है। अपने देखो हो कि आदिवासी क्षेत्र वे प्रकृति केवल अपने आय पाय नो हिस्सो नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा ने जिंदगी तक ही जुड़ियो तक है। जंगल पेड़ पौधो मिट्टी बीज बांस ने कई प्रकार की प्राकृतिक सामग्री अपने जीवन ने परंपरा नो हिस्सो रही है। इनमें तक की एक है बांस। बांस तक की अपना गाँव में घना जो मन कही ये वर्षो पहले तक की टोकरी सूप डलिया टोकना घरेलू उपयोग नी घना कानी अलग अलग चीजें अपने हाथ तक की बनाता भी रहो। पर आज ना टाइम में आप देख ही रहो कि आज जो पारंपरिक हुनर है ये धीरे धीरे नव रूप ले रो है।
0: होवे
1: आयनु साधन तक की जुड़न चु है। खास करी ने आदिवासी जो बोने ही ये अपना पारंपरिक ज्ञान ने हाथ ना हुनर ने बाजार ने जरूरत तक की जोड़ी रही है ने घरे बैठे तक नाना स्तर तक की शुरुआत करी ने अपनी आय ने वधावी रही है। तो आज अपने इस बात करूंगा कि हाथों नु अपनी जो बुनो नु हुनर है इन तक की बांस तक की ई कई कई चीजें बनावी सके ने आय नो नवो रास्तो निकाली सके।
0: होवे अंजलि बोन तो अना विषय माते आपड़े भाई बोनो खाते घणा अक्कानी वाते रेंगा पण कार्यक्रम नी शुरुआत में हामळा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते।
1: होवे तो भाई बोनो आप हमरते रेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वाग रेडियो 90.8 FM माते।

0: के गांव में 10 बोनों का समूह बने तको है। इनमें एक बोन जो है इबास तैयार करेगा, बिजी इन कटाई करेगा, कोई इन आकार डालेगा। तीसरी बोन होगा ये इन्हें डिजाइन करेगा, सजावट करेगा। चौथी बोन जो है ये तैयार सामान की जो गुणवत्ता है इन्हें चेक करेगा, जासेगा क्या हो से बनू एक नहीं बनू। इन्हें साथ बीजी जो बोन रहेगा ये बाजार में सामान पुगावानु काम करेगा, ऑर्डर लेगा, वाटेगा, सामान केटला में वेसू है, केटला पैसा मलवा जुए, ये हित्ती जानकारी ई हित्ती बोने मलीने निर्णय लेने करी शके। आपणे केवू चंगा कि केवल सामान बनाबू ने बाजार नी जरूरत ने भी आपणे हमसवो होगा। जई वगत आपणे कोई चीज बनावी रहो ई बाजार में पसंद आवी रही है कि नहीं आवी रही, जे चीजें बनावी है अनमें कई चीजें वधारे पसंद आवी रही है, एने अनुसार आपणे बीजी चीजें बनाववानी कोशिश करवी है। ने आपे जेम की केस दीधु है कि अवडेना टाइम में आपणे हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल तक की घना कनी चीजें आपणे करी शको। तो भाई बहनों आदिवासी जे कला है इने आपणे अगाड़ी पुगाड़वानी जरूरत है। आदिवासी बोने एक मोटी ताकत है कि आपणी स्थानीय ने सांस्कृतिक चीजों ने समझी सके। बास तक की आपणे घना कनी चीजें बनावी शक ने इन तक की आपणी आय ने आपणे खुद भी आत्मनिर्भर बनी शक। केवू चंगा मनीषा बोन आपणे भाई बहनो ने कि आपणे जे गांव है इनमें रोजगार ना अवसर केवल बार देश नहीं આપણે એ ભી ઘણા કની ચીજ ઉપલબ્ધ હે, બસ જરૂરત હે આપણને હમસવાની ને એની દિશા મે યોજના બનાવીને હેત મન કને એકઠા થઈને કાર્ય કરવાની। જય ભગત સબ મનક એક હાથે મલીની ચીજને હીકેંગા હમઝેંગા હરતે કરી શકંગા રાય મસુરા લેંગા તો સી ચીજે પૂરી થઈ શકે। તો કહી શકો આપણી બુનોને કે આપણે ગામનું હુનરને આપણને ઓળખવું હોગા, આપણી બુનોનું જે હુનર હે એને અગાડી વધાવવું હોગા, પ્રકૃતિ ને સંસાધન ને જિમ્મેદારી તકી ઉપયોગ કરીને ખુદ બી આત્મનિર્ભર બનવું હે ને બીજાને બી આત્મનિર્ભર બનાવવું હે।
1: હવે અંજલી બોન તો આ વિષય માટે આપણે ભાઈ બોને કથી ઘણા હક્કાની વાતી થઈ ગઈ હે। હવે દેખી રહીએ હે કે ટેમ બી થઈ જો હે આપણે કાર્યક્રમ કથી સૂટ પડવાનો, સૂટ તે પડે પણ સાતા કથી પહેલે એક બીજું કે થાંભળી લ
0: હવે।

0: सेहत नो राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
4: हिंडो स्कूल जा आपड़े, अपना भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
3: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, कभी कभी जिंदगी में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बात समझ ही नहीं पाता। हम समझना चाहते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम चाहते हैं कि कोई हमारी खामोशी के पीछे छिपी बात को समझे, लेकिन सामने वाला सिर्फ बात सुनता है, हमारी भावनाएं नहीं। और तब मन में एक सवाल उठता है कि मैं आखिर खुद को किसे समझाऊं? कभी परिवार में ऐसा होता है तो कभी दोस्तों के बीच, कभी काम की जगह पर तो कभी कभी उन लोगों के साथ भी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। हम बोलते हैं कि तुम मुझे समझते क्यों नहीं, लेकिन क्या हर बार किसी दूसरे का हमें समझना जरूरी है? क्या हमारी शांति इस बात पर निर्भर करनी चाहिए श्रोता साथियों कि दूसरा व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझे या नहीं? और अगर कोई हमें समझ ही न पाए तो क्या हम खुद को गलत मान लें या फिर खुद को संभालना सीखें? इन्हीं सवालों के साथ आज के सपनों की उड़ान में हम बात करेंगे कि जब कोई हमें समझ न पाए तब खुद को हम कैसे संभालें। तो बातें हमारी इस विषय पर आपसे ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू करा ही दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है कि जब कोई हमें समझ न पाए तब खुद को कैसे संभाले। जी हाँ श्रोता साथियों, हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला हमें केवल उतना ही देख सकता है जितना हम उसे दिखाई देते हैं। हमारे चेहरे को देख सकता है लेकिन हमारे भीतर की लड़ाई नहीं। वह हमारी चुप्पी देख सकता है लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं। वह हमारा गुस्सा देख सकता है लेकिन शायद ये नहीं जानता कि उस गुस्से के पीछे कितनी निराशा जमा है। वह हमारी मुस्कान देख सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसे पता हो कि उस मुस्कान के पीछे कितनी चिंता छिपी है। इसलिए श्रोता साथियों, जब कोई हमें समझ नहीं पाता तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि उसे हमारी परवाह नहीं है। कई बार उसके पास हमारी पूरी कहानी ही नहीं होती और कई बार हम अपनी बात उस तरह कह नहीं पाते जिस तरह हम महसूस करते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपने ही हमें नहीं समझे। जी हाँ, किसी अनजान व्यक्ति का हमें न समझना शायद इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई अपना ही हमारी बात न समझे तब मन ज्यादा दुखता है। हम सोचते हैं कि अगर ये भी मुझे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। यही से अकेलापन महसूस होने लगता है। जी हाँ, हम बातचीत कम कर देते हैं, मन की बातें अपने अंदर रखने लगते हैं और कभी कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन आने लगता है और धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि शायद हमारी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन हमें यहाँ एक बात समझनी होगी कि किसी का हमें न समझ पाना हमारी भावनाओं को गलत साबित नहीं करता। अगर आपको किसी बात से दुख हुआ है तो आपका दुख वास्तविक है। अगर आपको किसी परिस्थिति से डर लगा है तो आपका डर वास्तविक है। अगर आपको किसी बात से खुशी मिलती है तो वह खुशी भी वास्तविक है। हर भावना को सामने वाले की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। श्रोता साथियों, जब कोई हमें नहीं समझता तो सबसे पहले जरूरत होती है खुद को समझने की। क्योंकि कई बार हम दूसरों से चाहते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन हमने खुद अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की होती। हमें खुद से पूछना चाहिए कि मुझे वास्तव में दुख किस बात से होता है। क्या किसी के शब्दों से, क्या किसी के व्यवहार से, या क्या मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्या मुझे नजरअंदाज किया गया, क्या मुझे लगा कि मेरी मेहनत की कद्र नहीं हुई, या फिर मैं पहले से ही किसी तनाव में था और छोटी सी बात ज्यादा बड़ी लग गई। श्रोता साथियों, जब हम अपनी भावनाओं की वजह पहचान लेते हैं तब मन थोड़ा साफ होने लगता है। जिंदगी में बहुत सारी ऊर्जा इस बात में हम लगा देते हैं कि मैं सही हूँ या सामने वाले को समझना ही नहीं है। हम बार बार अपनी बात समझाते हैं, उदाहरण देते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं, अपनी सफाई देते हैं, साथ ही कई सारी चीजें हम उन्हें कहते हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी नहीं समझता। तब हमें रुक कर सोचना चाहिए कि क्या मुझे हर व्यक्ति को अपनी बात साबित करनी ही है। नहीं, क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति हमारे नजरिए से सहमत हो ये जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी बात कह देना पर्याप्त तो होता है। उसके बाद सामने वाला उसे समझे या न समझे, यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम अपनी बात को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों की समझ को कभी भी नहीं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सी बार बहुत से लोग हमारी बातें समझ नहीं पाते, तो क्या हमें उस चीज को लेकर निराश होने की जरूरत है या हमें खुद को समझना चाहिए। श्रोता साथियों, अपने बात कहने का तरीका भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जब कोई हमें न समझे तो हम चुप होकर सब सहते रहें। नहीं, अपनी बात कहना जरूरी है, लेकिन आरोप लगाकर नहीं, अपनी भावना बताकर। उदाहरण के लिए, तुम कभी मुझे समझते ही नहीं की जगह कहा जा सकता है। जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही। मैं चाहती हूँ कि मेरी बात एक बार शांत होकर सुनी जाए। दोनों वाक्यों में फर्क देखिए। पहले वाक्य में सामने वाला खुद को कटघरे में महसूस कर सकता है। दूसरे वाक्य में श्रोता साथियों, हम अपनी भावना बता रहे हैं। कई बार सामने वाले को हमारी भावना समझने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बात शिकायत के रूप में पहुंचती है। इसलिए सही भावना को सही शब्द देना भी एक कला है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है और हर व्यक्ति हमारी भाषा समझे ये जरूरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भाषा का मतलब केवल शब्दों की भाषा नहीं, हर व्यक्ति भावनाओं को अलग तरीके से समझता है। कोई प्यार शब्दों से जताता है, कोई काम करके, कोई समय देकर, कोई चिंता करके, तो कोई चुपचाप साथ खड़े रहकर। इसलिए जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसी तरीके से भावनाएं दिखाएं जिस तरीके से हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर उसे मेरी परवाह होती तो वह ऐसा करता, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला अपनी तरीके से परवाह कर रहा हो। इसलिए रिश्तों में एक बात जरूरी है कि सिर्फ यह मत देखिए कि सामने वाला क्या नहीं कर रहा, ये भी देखिए कि वह अपने तरीके से क्या कर रहा है। जी हाँ श्रोता साथियों, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने अपनी बात शांत होकर समझाई, बार बार समझाने के बाद भी सामने वाला जानबूझकर हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, हमारी बात का मजाक उड़ाता है, हमारी हर भावना को गलत बताता है, तो हमें हर बार खुद को ही दोष नहीं देना चाहिए। किसी रिश्ते में समझ और सम्मान दोनों तरफ से जरूरी होते हैं। हमें ये सीखना होगा कि दूसरों को समझाना जरूरी है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। अपनी शांति बचाना भी जरूरी है, अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है। कभी कभी थोड़ी दूरी लेना भी जरूरी हो सकता है, ताकि भावनाएं

फैसला लेने के बजाय कुछ छोटी चीजें की जा सकती हैं, जैसे कि हर बात का जवाब उसी क्षण देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मन बहुत भरा होता है, उस समय बोले गए शब्द बाद में पछतावा दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा समय लीजिए। अपने मन की बात कागज पर लिखिए। मुझे किसी बात ने दुख दिया। कई बार लिखते लिखते हमें खुद अपनी समस्या समझ आने लगती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान अकेले ढूंढना जरूरी नहीं है। कोई भरोसेमंद दोस्त, परिवार का सदस्य, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति हमारी बात सुन सकता है, इसलिए कभी कभी समाधान से पहले सिर्फ सुना जाना भी बहुत राहत देता है। इसी के साथ बात आती है, खुद को दोष देना बंद करें, क्योंकि दोस्तों किसी का आपको न समझना हमेशा आपकी गलती नहीं होती। हर गलत फहमी की जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर मत लीजिए। आप अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपना व्यवहार नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा इसे हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। श्रोता साथी, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी कि मान लीजिए कि एक युवा अपने गांव में कोई नया काम शुरू करना चाहता है। वह परिवार को अपनी योजना बताता है। परिवार डर जाता है और कहता है, यह काम मत करो, पता नहीं सफल होगा या नहीं। युवा को लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं। लेकिन अगर वह तुरंत नाराज होकर सब छोड़ दे तो शायद उसे पछतावा हो। वह परिवार की चिंता को समझ सकता है, अपनी इच्छा को भी समझा सकता है। वह कह सकता है कि आपकी चिंता अपनी जगह सही है, लेकिन मैं इस काम को समझकर छोटी शुरुआत करके देखना चाहता हूँ। यहाँ उसने न तो अपनी इच्छा छोड़ी और न ही परिवार की चिंता का मजाक बनाया। यहीं से शुरू होता है संतुलित जीवन। जी हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझता, लेकिन शायद हम खुद को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे होते हैं। हम चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला हमारे मन की असली बात समझ जाए। ऐसा हमेशा संभव ही नहीं है श्रोता साथियों, इसलिए खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जो महसूस कर रहे हैं उसे पहचानिए, जो कहना है उसे स्पष्ट कीजिए, जो बदल सकते हैं उसे बदलिए, और जो आपके नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार करना सीखिए। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छी बातें रही हैं कि किस तरीके से बहुत सी बार बहुत से लोग हमें समझ नहीं पाते, तो उस समय हम खुद को कैसे संभालें। आशा करती हूँ कि ये बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: मारू नाम गिल्ली है ने मू मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल थे के आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मू हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है, तो मू दूड़ी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पीवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने कीधु कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूध ज पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खवड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नो दूध ज पीवू है।
3: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।
4: जागृति बुन आपे कारे सोचू है, अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था।
5: नाना अंजलि बोन हूँ था का।
4: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बोन एटले इस मन का कहे है कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
4: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि पुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
4: होवे होवे जागृति पुन आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी बिल्कुल
1: साथियों, आज हमारे कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि सिर्फ सुनना नहीं समझना भी जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: सांकेतिक भाषा से संवेदनशील समाज की ओर। जी हाँ श्रोता साथियों, हम अक्सर कहते हैं कि किसी की बात सुनना जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्या हर बात अपनी बात बोलकर या आवाज के माध्यम से ही हम तक पहुंचाई जा सकती है? तो बिल्कुल नहीं। हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं कशिश, जो सुनने या बोलने में कठिनाई का सामना करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: उनके लिए संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है सांकेतिक भाषा। लेकिन श्रोता साथियों, सांकेतिक भाषा केवल हाथों की गतिविधियां नहीं है, यह भावनाओं, विचारों, जरूरतों और अधिकारों को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम भी है।
0: बिल्कुल।
1: जब हम सांकेतिक भाषा को समझने का प्रयास करते हैं तो हम केवल एक भाषा नहीं सीखते बल्कि एक दूसरे को समझने की दूरी कम करते हैं।
0: जी
1: और
0: हाँ।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर ढेर सारी बातें करने वाले हैं कि सिर्फ सुनना नहीं समझना भी जरूरी है सांकेतिक भाषा से संवेदनशील समाज की ओर कदम को लेकर।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो बातें इस विषय को लेकर आज हम ढेर सारी करेंगे हमारे दोस्तों से। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना पहले इसी दस्तूर को हम निभाए और श्रोता साथियों को यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनाए।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगे मैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि सिर्फ सुनना नहीं समझना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: सांकेतिक भाषा से हम संवेदनशील समाज की ओर कदम कैसे बढ़ाएं, अंजलि जी आज इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। आपने जैसा कि गीत से पहले बताया था कि हम अक्सर कहते हैं कि किसी की बात सुनो, लेकिन श्रोता साथियों क्या किसी की बात सुन लेना ही काफी होता है क्या? कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी बात आवाज से नहीं बल्कि हाथों के इशारों, चेहरों के भाव और शरीर की भाषा से भी कहता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में साथियों हमारी जिम्मेदारी सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि समझने की भी बन जाती है। हम देखते हैं कि साथियों संवाद इंसान की सबसे महत्वपूर्ण

0: जरूरतों में से एक होता है। हम अपने विचार बताते हैं, अपनी खुशी साझा करते हैं, अपनी परेशानी व्यक्त करते हैं, सवाल पूछते हैं और दूसरों की बात समझते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन संवाद केवल आवाज के माध्यम से ही हो ये जरूरी नहीं होता अंजलि जी। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करते हैं। उनके लिए हाथों की गति, चेहरे के भाव और संकेत सिर्फ इशारे नहीं होते बल्कि विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और जब हम सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश करते हैं तब सिर्फ हम एक भाषा नहीं सीख रहे होते, हम एक दूसरे के बीच मौजूद दूसरी दूरी को कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि संवाद का अर्थ केवल यह नहीं है कि एक व्यक्ति बोले और दूसरा व्यक्ति सुन ले। संवाद का असली अर्थ है अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना और सामने वाले की बात को समझना।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, किसी व्यक्ति की आवाज हमें सुनाई नहीं देती तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। हो सकता है कि वो अपने हाथों के इशारों से अपनी बात कह रहा हो सकता है कि वो चेहरों के भावों से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो।
0: हाँ।
1: हो सकता है वो लिखकर, चित्र बनाकर या किसी दूसरे माध्यम से अपनी बात

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में सांकेतिक भाषा की समझ को लेकर हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं,
1: जी हाँ,
0: यही कशिश श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि परिवार से शुरू हो सकती है संवेदनशीलता।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, संवेदनशील समाज बनाने की शुरुआत किसी बड़े अभियान से नहीं बल्कि हमारे अपने घर से हो सकती है।
1: जी हाँ।
0: यदि परिवार में कोई सदस्य सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है तो परिवार के दूसरे सदस्य भी कुछ सामान्य संकेत सीख सकते हैं, जैसे कि नमस्ते, धन्यवाद, खाना पानी, घर, स्कूल, मदद, अच्छा, ठीक है, हाँ और नहीं, जैसे रोजमर्रा के संकेत सीखना जरूरी है। इससे परिवार के उस सदस्य को यह महसूस होता है कि उसकी भाषा को भी महत्व दिया जा रहा है। बच्चों को भी छोटी उम्र से ये सिखाया जा सकता है कि हर व्यक्ति संवाद करने का तरीका अलग अलग तरीके से रखता है।
1: बिल्कुल।
0: और किसी के अलग तरीके का मजाक नहीं बनाना चाहिए। बच्चे
1: हाँ।
0: जब सम्मान करना सीखते हैं कशिश, तो वही संस्कार आगे चलकर समाज को दिखाई देते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। साथी, अगर बात करें सांकेतिक भाषा और सम्मान के रिश्ते की, तो साथियों, भाषा सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं होती, भाषा हमारी पहचान से भी जुड़ी हुई होती है।
0: बिल्कुल।
1: जब हम किसी की भाषा का सम्मान करते हैं अंजलि जी, तो वास्तव में हम उस व्यक्ति के अनुभव की पहचान का भी सम्मान कर रहे होते हैं।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, इसलिए अगर कोई व्यक्ति सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करता है तो उसे देखकर हमें आश्चर्य करने के बजाय, उसे अलग समझने के बजाय, हमें सहजता से उसकी बात को समझना चाहिए, क्योंकि यह भी एक संवाद का तरीका है और मैं इसे समझने की कोशिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। दोस्तों, हमारे छोटे छोटे प्रयास ही किसी के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अब सवाल यह आता है कि हमारी जो युवा साथी है वो इस दिशा में क्या प्रयास कर सकते हैं। तो युवा जैसा कि समाज की ऊर्जा है अंजलि जी,
0: बिल्कुल,
1: नई चीजें सीखने, नई सोच अपनाने और बदलाव को आगे बढ़ाने की क्षमता युवाओं में बहुत ज्यादा देखी जाती है। आज के युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, वीडियो बनाते हैं, नए सोशल वर्क कह सकते हैं कि काम करते हैं, कौशल सीखते हैं और अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं। तो क्यों ना इसे डिजिटल दुनिया में सांकेतिक भाषा को सीखने और समझने की शुरुआत भी की जाए।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, युवा अपने स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल और समुदाय में इसके प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। कुछ सामान्य सांकेतिक संकेतों को सीखना भी शुरुआत हो सकती है, जैसे कि किसी के व्यवहार को समझना, सम्मान करना और धैर्य लगाना।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही बात आती है कि स्कूल बच्चों के सीखने की जगह ही नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार सीखने की भी जगह है।
1: बिल्कुल।
0: यदि किसी कक्षा में सुनने या बोलने में कठिनाई वाला बच्चा पढ़ता है तो उसके साथियों को उससे दोस्ती करने, उसकी बात समझने और उससे गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसे हर गतिविधि से अलग कर देना समाधान नहीं है श्रोता साथियों।
1: बिल्कुल।
0: खेल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चित्रकला हो, कहानी हो या कोई प्रतियोगिता, हर बच्चे को अपनी क्षमता के अनुसार भाग लेने का अवसर मिलना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कक्षा में शिक्षक भी सरल दृश्य सामग्री, लिखित निर्देश और आवश्यकता अनुसार सांकेतिक भाषा की सहायता ले सकते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, समावेशी शिक्षा का अर्थ यह नहीं है कि बच्चों को उसकी जरूरत के कारण पीछे न छोड़ा जाए।
1: जी हाँ।
0: अब जरा अस्पताल की स्थिति के बारे में सोचिए कि किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है, दवा के बारे में जानकारी चाहिए या डॉक्टर को अपनी समस्या समझानी है, लेकिन अगर संवाद का माध्यम उपलब्ध न हो तो वह व्यक्ति अपनी परेशानी सही तरीके से कैसे बताएगा।

0: ऐसी स्थिति में श्रोता साथियों ऐसी जगहों पर सांकेतिक भाषा को समझने वाले कर्मचारी दूरभाषीय लिखित जानकारी दृश्य संकेत या अन्य संचार साधन बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इसी तरह बैंक पंचायत सरकारी कार्यालय पुस्तक पुलिस सहायता केंद्र और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में भी संवाद को अधिक सुगम बनाने का प्रयास करना जरूरी है क्योंकि सुविधा तभी वास्तव में सबके लिए जरूरी होती है जब हर व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। आज हम देखते हैं कशिश के मोबाइल और इंटरनेट हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जानकारी शिक्षा सरकारी योजनाएं रोजगार स्वास्थ्य संबंधित संदेश बहुत कुछ डिजिटल माध्यमों से लोगों तक पहुंचता है। ऐसे में यह भी जरूरी है कि डिजिटल सामग्री अधिक से अधिक लोगों के लिए समझने योग्य हो। वीडियो में सांकेतिक भाषा की सुविधा स्पष्ट दृश्य सामग्री लिखित जानकारी और उपशीर्षक जैसे विकल्प संवाद को अधिक सुलभ बना सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों हमारे आसपास कोई व्यक्ति सांकेतिक भाषा का उपयोग करता है तो हम भी डिजिटल माध्यम से उसके साथ संवाद करने के लिए नए तरीके सीख सकते हैं। तकनीक का असली लाभ तभी है जब वह लोगों को जोड़ने का काम करे और दूरी बढ़ाने का नहीं।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि एक कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। कोई व्यक्ति सांकेतिक भाषा के माध्यम से संवाद करना चाहता है लेकिन बाकी लोग उससे बात करने में झिझक रहे हैं। अंजलि जी, ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति कैसा महसूस करेगा?
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है कि उसे ये लगे कि भीड़ होते हुए भी वह अकेला है। अब वही दूसरी तस्वीर देखिए, लोग उससे बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी बात ध्यान से समझ रहे हैं, जरूरत पड़ने पर लिखकर संवाद कर रहे हैं और उसके साथ सामान्य व्यवहार किया जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में अंजलि जी ये छोटा सा बदलाव उस व्यक्ति को ये एहसास दिला सकता है कि मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक समावेशन का महत्वपूर्ण कह सकते हैं हिस्सा है। श्रोता साथियों,
0: बिल्कुल,
1: समावेशी समाज बनाने के लिए नियम और सुविधाएं जरूरी नहीं है लेकिन केवल नियमों से समाज संवेदनशील नहीं बनता। संवेदनशील समाज तब बनता है जब लोगों की सोच भी बदले, जब हम किसी व्यक्ति की उसकी अक्षमता के आधार पर नहीं बल्कि उसकी क्षमताओं और व्यक्तित्व के आधार पर उसे देखेंगे। जब हम किसी की बात को समझने में थोड़ा अतिरिक्त समय लगाने को बोझ नहीं मानेंगे, जब हम संवाद के अलग तरीकों को स्वीकार करेंगे और हम ये सोचेंगे कि अगर मुझे सामने वाले की भाषा नहीं आती तो शायद मुझे उसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि समाज में बदलाव जरूर आएगा। अंजलि जी
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, यही हम कहना चाहेंगे कि संवेदनशीलता का अर्थ दया नहीं बल्कि सम्मान है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दया की नजर से देखना कि वह सुन या बोल नहीं सकता संवेदनशीलता नहीं है। संवेदनशीलता का अर्थ है उसकी क्षमता को पहचानना, उसकी बात को महत्व देना और उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार करना। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी प्रतिभा होती है, किसी को चित्र बनाने में रुचि हो सकती है तो कोई पढ़ाई में अच्छा हो सकता है, कोई खेल में आगे बढ़ सकता है, तो कोई तकनीक में कुशल हो सकता है, तो कोई अपनी मेहनत से व्यवसाय चला सकता है। इसलिए किसी व्यक्ति की एक कठिनाई को देख कर उसकी पूरी पहचान तय नहीं करनी चाहिए, उसे उसकी क्षमता और व्यक्तित्व के साथ देखना भी चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम बात कर रहे हैं सांकेतिक भाषा को लेकर, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर हम एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, हम जान रहे हैं कि किस तरीके से हमें सांकेतिक भाषा को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के बोलने का तरीका अलग होता है। किसी भी व्यक्ति की पहचान, कशिश, उसकी आवाज, बोलने की क्षमता या संवाद करने के तरीके से तय नहीं होती है। उसकी पहचान उसके विचारों, हुनर,

0: सपनों और उसके व्यक्तित्व से होती है। इसलिए हमें अपने आसपास ऐसे माहौल बनाने की जरूरत है जहां किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए बार बार ये साबित न करना पड़े कि वह भी समाज का बराबर हिस्सा है। सांकेतिक भाषा को समझने की पहल केवल संवाद को आसान नहीं बनाती बल्कि लोगों के बीच विश्वास भी बढ़ाती है। जब कोई व्यक्ति देखता है कि सामने वाला उसके संकेतों को समझने के लिए प्रयास कर रहा है तो उसके भीतर अपनेपन की भावना पैदा होती है। उसे लगता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है और उसकी उपस्थिति को स्वीकार किया जा रहा है। हमारे गांव, मोहल्ले और समुदाय में ऐसी कई परिस्थितियां आती हैं जहां सही जानकारी न मिल पाने के कारण कोई व्यक्ति किसी अवसर से वंचित रह सकता है। शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य सेवा हो, सरकारी सुविधा हो या सामाजिक कार्यक्रम, जानकारी तक पहुँच और अपनी बात रखने का अवसर सभी के लिए जरूरी है। इसलिए समावेशिता केवल एक विचार नहीं बल्कि रोजमर्रा की व्यवस्था का हिस्सा भी बननी चाहिए।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथ ही हम देखते हैं कि कई बार समस्या भाषा की नहीं बल्कि हमारी सोच की भी होती है। अगर किसी व्यक्ति को देखकर तुरंत उसके बारे में हम धारणा बना लेते हैं श्रोता साथियों, तो ये सही बात नहीं है। लेकिन हमें याद ये भी रखना है कि किसी व्यक्ति की संवाद शैली उसके व्यक्तित्व उसकी क्षमता को तय नहीं करती। हर व्यक्ति के पास अपनी प्रतिभा है, अपने सपने हैं, भावनाएं हैं और अपनी पहचान होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए किसी को देखकर ये तय कर देना कि ये क्या कर पाएगा, ये एक गलत सोच हो सकती है। हमें श्रोता साथियों अपने सवाल को बदलना होगा। हमें क्या यह क्या नहीं कर सकता कि पूछने के बजाय इसे आगे बढ़ने के लिए किस तरह का अवसर और सहयोग चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। और यही सोच समाज को अधिक संवेदनशील बना सकती है। अंजलि जी कहना चाहेंगे हमारे साथियों से कि बदलाव हमेशा बहुत बड़े कदमों से शुरू नहीं होता। कभी कभी बदलाव एक छोटे से प्रयास से भी शुरू होता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी की बात धैर्य से सुनना, उसके संवाद के तरीके का सम्मान करना, समझ ना आए तो दोबारा पूछना, लिखकर संवाद करने की कोशिश करना, जरूरत पड़ने पर सहायता देना और सबसे महत्वपूर्ण किसी को उसकी अलग जरूरत के कारण असहज महसूस न कराना, ये सभी चीजें श्रोता साथियों काफी जरूरी है हमारी समझने के लिए। हम सभी अपने स्तर पर ये सभी चीजें कर सकते हैं। आज जैसा कि सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर एक छोटा सा संकल्प हम सभी को लेना चाहिए और वो ये है अंजलि जी कि हम संवाद के हर तरीके का सम्मान करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: हम किसी व्यक्ति को उसके बोलने, सुनने, संवाद करने के तरीके के आधार पर कम नहीं समझेंगे। हम जरूरत पड़ने पर संवाद का दूसरा माध्यम अपनाने की कोशिश करेंगे। हम अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय में सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूकता को बढ़ाएंगे। और सबसे जरूरी बात कि हम सिर्फ आवाज सुनने वाला समाज नहीं बल्कि भावनाओं और जरूरतों को समझने वाला समाज बनने की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम यह शुरुआत बहुत छोटे स्तर से कर सकते हैं। अपने परिवार में बच्चों को अलग अलग तरीके से संवाद करना सिखा सकते हैं। समुदाय में लोगों को सांकेतिक भाषा के प्रति जागरूक कर सकते हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसी व्यवस्था के बारे में सोच सकते हैं जिससे अधिक लोग आसानी से जुड़ सकें। स्कूलों में बच्चों को यह समझा सकते हैं कि किसी की गलती, किसी की अलग क्षमता उसका मजाक बनाने का कारण नहीं है बल्कि उसे समझने और सम्मान देने का अवसर है। सबसे जरूरी बात कि हम किसी व्यक्ति की ओर देखकर उसके बारे में अपनी धारणा न बना लें, उसकी जरूरत पूछें, उसकी बात सुनने का तरीका खोजें और उसे अपनी बात पूरी करने का अवसर दें। कई बार हम मदद करने की जल्दी में सामने वाले की स्वतंत्रता ही छीन लेते हैं। इसलिए सहायता भी ऐसी होनी चाहिए जिससे सम्मान व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार मिल पाए।
1: जी
0: तो जैसा कि कार्यक्रम में बातें ढेर सारी हो गई हैं, अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगी ताकि आज का कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वह राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर को।
1: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। स्वागत करती हूं साथियों आप सभी का आज के इस कार्यक्रम, आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि हम कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो हमारा आपसे फरमाइशों का सिलसिला चलता है सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे कार्यक्रम में नए हैं, आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9414082643। नंबर मैं फिर से बताना चाहूँगी क्योंकि इसी नंबर के ज़रिए आप अपने राय, सुझाव और फरमाइश के गीत हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों हमें इंतज़ार रहेगा आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम में फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि सुबह के 11 बज चुके हैं, मैं बढ़ना चाहूँगी हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच चाहिए रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों रजिया सुल्तान, गीत के बोल हैं ए दिले नादान। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी जुड़ रहे हैं कोपर गांव से सुरेश मालोड़े, वर्षा मालोड़े, श्रद्धा मालोड़े, मानसी मालोड़ी जी। बागपत यूपी से आसिफ अली खान, मोमिन अनास, सादिक अली खान, सारिक अली खान और भी साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी खंडवा से जुड़ना चाह रहे हैं राकेश ताई, लल्लू ताई, सुहन जा जोगी जी और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयागराज चौधरी जी, लड्डू देविका चौधरी जी। तो आइए साथियों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं ए दिले नादान। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मलयान सरधना मेरठ से। फिल्म का नाम है श्रद्धा साथियों। आपको बताना चाहूंगी अर्पण गीत के बोल हैं लिखने वाले ने लिख डाले। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गंज द्वारा से है शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, अनु अंसारी जी और भी दोस्त हैं। नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगला बिंदी शाह, राजन शाह, सुषमा कपूर जी। बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रतापत, मुनेश देवी, भारती जी, अंजलि दीन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, नूतन, रामनंद कश्यप। दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, सीमन देवी जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं लिखने वाले ने लिख डाले। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है मजनू कटेला से। फिल्म का नाम है धड़कन, गीत के बोल हैं दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमा मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। बोरखरा पित्रा मल से हैं विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त, चेतन नाटा, दीक्षा कुश मुड़त, दिलीप सिंह पंवार जी और भी साथी जुड़ना चाह रहे। गाजियाबाद से शिशपाल अकेलरी, तेजपाल प्रजापति जी, पाटन दिलादुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं बलकर्ण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र, मनहरण वर्मा जी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुर गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी, दिशा गोस्वामी जी। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुश्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुषी श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। इसी बीच हमारे श्रोता साथी जुड़ रहे हैं जमशेदपुर से हरिंदर सिंह भाटे, एंजल भाटिया, सोनू तमन्ना, पप्पी भाटिया जी। संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउला अब्दुल रहमान डावर, कादर डावर, उमर डावर। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोताओ, जैसा कि धड़कन फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत था, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। गीत के बोल हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे मंजुताई लोखंडे, रामहरि लोखंडे, सूरज लोखंडे, अमिता लोखंडे, सुरमित लोखंडे जी, ये यवतमाल से जुड़ रहे हैं। और भी हमारे दोस्त हैं जो पोटाकला दुर्ग से हैं, संजय साहू, सुधा साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं बंडू लोहार, चंद्रकला पोपलगढ़, देवीदास पोपलगढ़, बंडू पोपलगढ़ जी। और भी हमारे साथी जो हैं मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं, अजित कसना, माया देवी, ऋतिकादित्य कसाना, ललदावली मुरादाबाद से हैं। दादरीगढ़ भिवानी से है कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, रीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लड़कुल मल्होत्रा, नानक चंद्र मल्होत्रा, रोहतक से पीयूष सिक्का, डुग्गो सिक्का, भाविका कोयल सिक्का। इसी बीच गंजुटवारा से हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु अंसारी, करीम अंसारी जी। मेरठ से जुड़ रहे हैं अनिल कुमार के गोड़ के, विशाली अनिल, प्राजक्ता गोड़ के, वैष्णवी गोड़ के। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दनिश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। गिरडीह झारखंड से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद याशिन अंसान, शैमन नवाज, असन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथी, उस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है बाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए। गीत के बोल हैं श्रोता साथी, तेरे मेरे बीच में। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा जी। इसी बीच कोलगांव से जुड़ना चाह रहे हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी। जुड़ना चाह रहे हैं और भी सार्थक प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुम्हार जी। जुड़ना चाह रहे हैं और भी हमारे श्रोता साथी। जुड़ना चाह रहे हैं महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेश, शर्मा सुरेदे, परेश सुरेश, मायरा सुरेश जी। जुड़ना चाह रहे हैं भोपाल राजस्थान से अनुरोध करता धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से है रामचंद्र विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रजना, बदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। जोधपुर राजस्थान से जुड़ना चाह रहे रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष जी। उत्तराखंड से जुड़ना चाह रहे हैं ताजमुद अंसारी, गुलाम शाबी राही, मेहराज जहां। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरे मेरे बीच में। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, फिल्म का नाम है साजन, गीत के बोल हैं, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। ये फरमाइश हमारे बीच आई है डोरी लोहारा से। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल नेताम, कामेश नेताम, माहिर नेताम जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। शेरवानी गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं, अताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबाना अंसारी, आलिया अंसारी जी। समस्तीपुर बिहार से हैं मीरा सिंह, ज्योति सिंह, रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह और भी हमारे श्रोता साथी हैं। जुड़ना चाह रहे उमाली महाराष्ट्र से हैं उदय पाटिल, अनुप कुमार, पलसी से विजय शोगकार, जयशी शेगोकार। गांधी से जुड़ना चाह रहे हैं ग्राम से, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जोहरी और भी दोस्त जुड़ रहे हैं सीगीत के साथ में। लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज, ऋषभ मरावी जी। धनौरी तेलीवाला से हैं निशा सलमानी, नौशा सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू जी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, प्रियांशी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंडापुर शहर से हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। बाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं, आपको बताना चाहूंगी, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त हमारे बाटापारा से ही जुड़ रहे हैं हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू। गंजुडवारा से हैं श्रीरामपुर से, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं हमारे साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश में हम आपके मनपसंद गीतों के साथ ढेर सारा मनोरंजन करते हैं। तो अगर आप भी आपकी फरमाइशों के गीत को सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9464142643। इसी के साथ दोस्तों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा था, इससे पहले हमारा गीत चल रहा था देखा है पहली बार साचन की आंखों में प्यार। इसी बीच अगली फरमाइश आई है शीशा हो या दिल आंखें टूट जाता है। इस गीत को आवाज दी है आशा भोसले ने। फरमाइश करता है इस गीत की जराफाबाद से है श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, सचिन संचित, प्रथमेश सर्वत, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख। और भी साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। बुलंदशहर से है मोहम्मद शहीद अब्बासी, निगस परीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अबान, पूरा अब्बासी परिवार। मिलाड़ा राजस्थान से है रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान। सहारनपुर से हैं सैयद मसरून, शाइना हसन, अक्सा अदीब, नाजिया आफिया और इब्राहिम सद्दाब। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल है शीशा हो या दिल आंखें टूट जाता है।

साथियों, जैसा कि अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। गीत के बोल हैं, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। फिल्म का नाम है खुदा गवाह। इस गीत को आवाज़ दी है मोहम्मद अजीज ने। फरमाइश करता है इस गीत के मुंगी पेठड़ महाराष्ट्र से हैं बाबा साहेब सारकभाई साहेब और प्रथमेश रोहिणी श्रावणी ईश्वरी नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नेवाकर निर्मला विशाल। मलकापुर महाराष्ट्र से हैं नारायण इंगले सोपान ताइडे आशीष। अनुरोध करता है डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर सदानंद मंदूरकर कुमार गौरव मंदूरकर आरव और अर्पिता। नांदेड़ इतला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल गणेशलाल जायसवाल शुभम प्रसाद जायसवाल अर्णव जायसवाल दुर्गेश्वरी जायसवाल राखी जायसवाल और तृप्ति जायसवाल। नवाशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी थांदी प्रियंका थांदी प्रशांत थांदी प्रीमियम थांदी वामिका और वाणी थांदी। फनीश कुमार चंदन सावित्री देवी चंदन मोहित कुमार चंदन देविका रानी चंदन गजेंद्र कुमार चंदन हेयांश कुमार चंदन छत्तीसगढ़ से हैं ये। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मैं तुझे कबूल।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, गीत की बोल है, पर्दा है पर्दा। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी और इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफ़ी ने। फरमाइश करता है साथियों इस गीत की इशरत खान, शायरा बेगम, रऊफ खान, साबरीन बेगम, शहबाज खान, शेफ खान, ईशान खान। अनुरोध करता है रोहतंग से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित बोट। सहारनपुर से हैं जोन, रोजी, पर्ल और विलेश। कुरावली से हैं रशीद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नूरिन अंसारी, आसिया अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। टिक्कमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं बजरेश विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। शिवाजी चौक कटनी से हैं अनिल, अमर, दिलीप, राजू, रंजन, विपिन, प्रकाश सोनी, अरुण, संजय, पवन यादव, सुनील जैन, लालू सोना, मोना हनी, यश सौम्या। मिर्चर महाराष्ट्र से ननकिशोर खट्टी, संगीता खट्टी, साक्षी, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जयश्री मेहतरे, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीपी कुल थे। तो आइए साथियों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

जरा अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

साथियों, अभी हमने अमर अकबर एंथोनी फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गीत सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। इसे भी अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है, टाइटल सॉन्ग है श्रोता साथी, और इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। फरमाइश करता है इस गीत के लूरमी चचेरी छत्तीसगढ़ से हैं कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पाश मरावी और ऋषभ मरावी, और भी दोस्त हैं जो जो नचा रहे हैं इसी गीत के साथ में। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं प्रेम साय राजवाड़ी, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पेकरा, जाखोद राजस्थान से हैं संभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे। गुलाबपुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राशल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है दिल तो पागल है।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है कभी खुशी कभी गम, टाइटल सॉन्ग है श्रोता साथी, और इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर ने। फरमाइश करता है इस गीत की बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, बेबी शालिया डावर, बेबी हलीमा डावर, बेबी जिकरा डावर खंडवा से हैं, शेख शहीद राही अनस भाई। अनुरोध करता है साथियों सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मनोत्रा, गव्या मनोत्रा, सच्चा सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी, अनारकली बाजाओ जंगराव से हैं ये, छुरी छत्तीसगढ़ कोरबा से हैं, लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानु शानु बब्बन, मोनू काना ठाकुर, हरिप्रिया परवणी, महाराष्ट्र से रुपये संगे, महेश संगे, प्रगेश संगे, वृत्य संगे, पूरा संगे परिवार, मोहाला से हैं मुकेश भट्ट, नीलम भट्ट, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका, हार्दिक, वंश भट्ट। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को, गीत के बोल हैं कभी खुशी कभी गम।

साथियों, जैसा कि अभी हमने लता मंगेशकर जी की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है दिलवाली दुल्हनिया ले जाएंगी। गीत की बोल है ना जाने मेरे दिल को। फरमाइश करता है इस गीत की अमरावती से है सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना ताई, हीरामन शिंदे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा ताई गुड़ाने। कोरबा छत्तीसगढ़ से है महेंद्र प्रताप मरकाम, जया मरकाम, जागेंद्र गजेंद्र जयंती, ममता मनीषा, मंजू मानसी, सुरेंद्र मरकाम, मोहन सिंह और सहोदरी बाई मरकाम। सरगांव छत्तीसगढ़ से है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत की बोल है हो गया है मुझको तो प्यार से छना।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है वीर सारा, गीत की बोल है तेरे लिए। फरमाइश करता है इस गीत की, कलारों से है नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, सिरसा से है राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा, सार्थक शर्मा, आकोट से है विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डापेराव। अनुरोध करता है इसी गीत के साथ जुड़ने वाले। दुलापुर उत्तर प्रदेश से है फरमान, सलमान, इरफान, इशरार, नरगिस खातून। छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष शिवास, विवेक शिवास, आयुषी शिवास। बिलतरा छत्तीसगढ़ से हैं मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित सोमू, मानस राज। जलाना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकनाथ जाधव, संगीता जाधव। नेहरू चौक बैठड़ से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीचा, पूनम गगनीचा, विशाल प्रिया, दिशानी निमित्त हुजा। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश किस गीत को।

साथियों, अगली फरमाइश आई है, गीत की बोल है पहला पहला प्यार है, फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन। फरमाइश करता है इस गीत की छत्तीसगढ़ से हैं कृष्णा, सुमन और प्रतीक। अनुरोध करता है तिलैया से हैं अभय कुमार, सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी, शाहू, रिया, जिया, टिशु, आयुषी, अनुरोध बाबू, मुन्नी देवी शाह, जयप्रकाश शाह और बसंतलाल शाह, हीरा मोती, पन्नालाल शाह। अनुरोध करता है मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वेदही जोशी, बेबी हंसिका जोशी। जदलपुर बत्सर से हैं पूनम नायडू जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हैं अब्दुल गफार डावर जी और भी दोस्त हैं जो जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से हैं मोना, प्रिया और हरीश। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को और यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

भाई बहनों, आ तो हती हमारी आज की सभा। हमें आशा कर रहा हूँ कि आज की सभा में प्रसारित था वारा कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लग्या इन्हें बल्ले आप मने राय सुझाव आ ले सको हमारे अणपता माते। अमर पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। अमारो पिन कोड नंबर है 327001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप मने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9414082643। तो भाई बोनू आ तो हती अपने आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा तारुदी आपनी बोन अंजलि नू। राम राम, राम राम।

जय गुरु भाई बनो, आप सब हनुमान स्वागत करो हूँ अमारी आज की हाजिर सभा में। आप सभा में रही हो आपू सामुदायिक रेडियो वॉकेट रेडियो 90.8 FM माते। हूँ आपने हाथे आपनी पूनंजलि पारेश्वर ने आज वार बुधवार ने तारीख 23 सितंबर 2026 नु ताड़ो है। भाई बनो अमे देखी रहा हूँ कि अपने स्टूडियो ने घड़ी में हाजिर ना पास वाकी के ही तब आपने शुरुआत करा हाजिर सभा में पुनः प्रसारित थावा वाला कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। भाई बहनों आज सभा ने शुरुआत करेंगा सप्ती के पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक की जोड़ कार्यक्रम आराधना तक की इन्हें मैं अपना हम रंगा आज न सुविचार निहाते भक्तिमय गीता ने अनस क्रम में आगाड़ी बढ़ंगा अमारी ने तुम्हारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज में आ कार्यक्रम आप हामरी शकोगा ठीक 5:30 माते प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने जागृति भट्ट ने हाथे इनिस कड़ी में भाई बोनो बीजा कार्यक्रम ने शुरुआत था का जेने के बालकनु बालपन इडली कार्यक्रम सच्चा बचपन आ कार्यक्रम आप हामरी शकोगा ठीक 6 प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मो आपनी बोन अंजलि पारेश्वर ने हाथे अनस क्रम में आगाड़ी बढ़ंगा अपने किसान भाई बहनों तक की जुड़ कार्यक्रम खेती बाड़ी आ कार्यक्रम आप हामरी शको का ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर एटले मौन मारे हाथे रहेंगा मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट इनिस कड़ी में अपने आगाड़ी बढ़ंगा अपने अधिकार कानून ने नियम तक की जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज आ कार्यक्रम आप हामरी शको का ठीक 7 प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मो आपनी मौन अंजलि पारेश्वर ने हाथे श्रोताओं बीजो कार्यक्रम शुरू थागा ठीक 7:30 माते कार्यक्रम घूमर आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी जागृति भट्ट ने मो आपनी बोन अंजलि पारेश्वर भाई बोनो इन बात ठीक 8 आप हमरोगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी अड़ा साथे मनोरंजन ने थागा पूरी भरमा जिनमें आप हमरोगा कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 माते इन बात भाई बोनो ठीक 9:10 आप हमरो का कार्यक्रम शामी कसर तो भाई बोनो आ तो हती अपने हाजिर सभा में पुनः प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा हवे अपने सभा की शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था की जुड़ कार्यक्रम आराधना तकी

0: श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता, फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता।
1: और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: थारी में पासो लावो चूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो,
3: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो केवल संवेदनशीलता से नहीं बल्कि समानता, सम्मान और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है। हमारा विषय है कशिश, युवा बने समावेशी समाज की आवाज, सांकेतिक भाषा से समान अवसर तक।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, हम अक्सर कहते हैं कि युवा देश का भविष्य है, लेकिन केवल भविष्य नहीं आज के समाज के सक्रिय भागीदार भी है हमारे युवा साथी। उनके पास सोच बदलने, नई पहल शुरू करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति भी है।
0: बिल्कुल
1: समावेशी समाज का अर्थ श्रोताओं ऐसा समाज जहां व्यक्ति की शारीरिक क्षमता, सुनने बोलने की क्षमता, भाषा, आर्थिक स्थिति या किसी अन्य व्यक्तिगत परिस्थिति के कारण उसके अवसर सीमित न हो।
0: जी हाँ,
1: जहां हर व्यक्ति को सम्मान, शिक्षा, रोजगार, संवाद और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले।
0: बिल्कुल,
1: और इस बदलाव में युवाओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है।
0: जी हाँ जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर युवा साथियों से हमारी ढेर सारी बातें होंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि हमारे युवा साथियों को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है और ये हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे दोस्तों को हम यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दे पहले।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, कहा गया है कि समाज तब आगे बढ़ता है जब विकास की राह में कोई पीछे न छूटे।
1: बिल्कुल।
0: और आवाज तब सशक्त बनती है जब वह हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसकी आवाज अलग तरीके से व्यक्त होती है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगे मैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से तो रूबरू आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि युवा अगर समावेशी समाज की आवाज बने और सांकेतिक भाषा किस प्रकार से उनके लिए समान अवसर खोज सकती है। अगर बात करें जागृति जी कि समावेशी समाज होता क्या है, तो दोस्तों समावेशी समाज यानी कि ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति को साथ लेकर चलने की सोच होती है।
1: बिल्कुल।
0: सिर्फ ये कहना कि सब बराबर है पर्याप्त नहीं है। असली समानता तब दिखाई देती है जब हमारे स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थान और साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार वास्तव में सभी के लिए सहज और सुलभ हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए युवा साथियों, कि यदि किसी श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए किसी कार्यक्रम में जानकारी केवल बोलकर दी जा रही हो तो वह व्यक्ति उस जानकारी से पूरी तरह जुड़ नहीं पाएगा।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वही जागृति जी, अगर वहाँ सांकेतिक भाषा या लिखित जानकारी की व्यवस्था होगी तो वही व्यक्ति भी कार्यक्रम में बराबरी से भाग ले सकता है।
1: बिल्कुल।
0: यानी कि दोस्तों समावेशन का मतलब किसी को अलग से सुविधा देना भर नहीं है। इसका मतलब है कि व्यवस्था ऐसी बनाई जाए जिसमें हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ सके।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि समावेशी समाज आखिर है क्या, यही बात करते हैं। सांकेतिक भाषा एक अलग भाषा नहीं, संवाद का एक मजबूत माध्यम है।
0: जी हाँ
1: श्रोताओं, हम में से बहुत से लोग सांकेतिक भाषा के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसे सीखने या समझने की कोशिश कम करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कशिश कि सांकेतिक भाषा हाथों के संकेत, चेहरे के भाव और शरीर की गतिविधियों के माध्यम से संवाद करने का माध्यम है। बहुत से बधिर और कम सुनने वाले लोग अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं कल्पना कीजिए कि किसी युवा को सांकेतिक भाषा का थोड़ा सा ज्ञान है, वो किसी बधिर व्यक्ति से सामान्य बातचीत करने की कोशिश करता है। हो सकता है कि वो पूरी तरह धारा प्रवाह न हो, लेकिन उसका एक छोटा सा प्रयास सामने वाले व्यक्ति को एहसास करा सकता है कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हारी बात मेरे लिए महत्वपूर्ण है। यही तो समावेशी की शुरुआत है। श्रोताओं, युवाओं को सांकेतिक भाषा सीखने को केवल एक अतिरिक्त कौशल के रूप में नहीं देखना चाहिए, ये संवाद की एक नई क्षमता और सामाजिक संवेदनशीलता का माध्यम भी बन सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम अपनी सोच बदलेंगे तो समाज को भी हम बदल सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि जागृति जी, युवा किसी भी समाज में बदलाव के सबसे सक्रिय वाहक हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास तकनीक है, सोशल मीडिया है, नए विचार है और सबसे बड़ी बात नई चीजें सीखने और अपनाने की क्षमता भी है। आज युवा अगर यह तय कर ले कि वे अपने आसपास के लोगों को उनकी क्षमताओं या सीमाओं के आधार पर अलग नहीं करेंगे तो समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।
1: बिल्कुल।
0: युवाओं मान लीजिए कि किसी कॉलेज में एक छात्र है जो कि बधिर है, अगर उसके साथ ही उसकी ओर ध्यान ही न दे तो वह सामाजिक रूप से अलग थलग महसूस करेगा। लेकिन अगर कुछ युवा उसके साथ संवाद करेंगे, सांकेतिक भाषा के माध्यम से सामान्य संकेत उसे सिखाएंगे, नोट्स ले और महत्वपूर्ण जानकारी उससे साझा करे और उसे गतिविधियों में शामिल करे तो वातावरण पूरी तरह बदल सकता है। जागृति जी
1: बिल्कुल कशिश,
0: इसलिए समावेशी समाज की शुरुआत हमेशा किसी बड़ी योजना से हो ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी इसकी शुरुआत एक छोटे से संकेत, एक छोटी सी मुस्कान, एक मदद और एक सम्मानजनक व्यवहार से भी हो सकती है।
1: बिल्कुल कशिश, इसी के साथ समान अवसर का मतलब भी बहुत जरूरी है। यानी कि समान अवसर का अर्थ ये नहीं है कि हर व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसी सुविधा दी जाए।
0: बिल्कुल।
1: बल्कि इसका अर्थ ये है श्रोताओं कि हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का उचित अवसर मिले। हम देखते हैं कशिश की, एक विद्यार्थी को पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए किताबें चाहिए होती है।
0: जी हाँ।
1: किसी दूसरे विद्यार्थी को पढ़ाई समझने के लिए अतिरिक्त दृश्य सामग्री या सांकेतिक भाषा की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। दोनों का लक्ष्य एक ही है, सीखना और आगे बढ़ना। इसीलिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना असमानता नहीं है, बल्कि ये वास्तविक समान अवसर की दिशा में कदम है।
0: बिल्कुल।
1: युवाओं को इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि युवा साथियों, हम आपसे बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार समावेशी समाज की आवाज बन सकते हैं और सांकेतिक भाषा के समान अवसर हमारे लिए क्या है ये हम जान रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें जागृति जी आगे भी ऐसे ही युवा साथियों से हमारी बनी रहेंगी, लेकिन अभी क्यों ना यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हमारे दोस्तों को हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि युवा किस तरह से समावेशी समाज की आवाज बन सकते हैं और सांकेतिक भाषा से समान अवसर तक कैसे जान पाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि गीत से पहले हमने समावेशी समाज आखिर क्या है इसके बारे में जाना था, सांकेतिक भाषा के बारे में जाना था, इसी के साथ युवाओं की सोच से बदलेगी समाज की सोच के बारे में जाना था और हम जान पा रहे थे समान अवसर के मतलब के बारे में।
1: जी हाँ,
0: यहीं जानते हैं शिक्षा में समावेशन बदलाव की सीढ़ी को लेकर।
1: बिल्कुल जागृति जी। दोस्तों, समावेशी समाज की मजबूत नींव शिक्षा से बनती है। स्कूल और कॉलेज केवल किताबों का ज्ञान देने की जगह नहीं है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, वे बच्चों और युवाओं को समाज में साथ रहना भी सिखाते हैं। अगर बचपन से ही बच्चों को यह सिखाया जाए कि अलग तरीके से संवाद करने वाला व्यक्ति भी हमारे समाज का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो आगे चलकर भेदभाव कम किया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: युवा स्कूल और कॉलेज के स्तर पर कई छोटे और बड़े प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि सांकेतिक भाषा के सामान्य संकेत सीखना, जरूरतमंद सहपाठी के साथ पढ़ाई की सामग्री साझा करना, समूह गतिविधियों में सभी को शामिल करना, किसी की अक्षमता का मजाक न बनाना, सोशल मीडिया पर संवेदनशील और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करना, समावेशन से जुड़े जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेना और साथ ही शिक्षकों और संस्थानों के सामने आवश्यक सुविधाओं की मांग रखना।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, इन छोटे प्रयासों का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है।
0: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ समावेशन केवल शिक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए। आज के समय में युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, किसी व्यक्ति की सुनने, बोलने, देखने या चलने की क्षमता अलग हो सकती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी प्रतिभा कम हो जाए। किसी के पास बेहतरीन कंप्यूटर कौशल हो सकता है, कोई डिजाइनिंग में अच्छा हो सकता है, कोई लेखन में हो सकता है, कोई कला में हो सकता है, कोई तकनीकी काम में और कोई उद्यमिता में। इसलिए समाज को व्यक्ति की कमी देखने के बजाय उसकी क्षमता और कौशल को पहचानने की सोच विकसित करनी होगी। युवा इस बदलाव में दो तरह से योगदान दे सकते हैं, एक स्वयं समावेशी सोच अपनाकर और दूसरा भविष्य में जब वे किसी संस्था, व्यवसाय या टीम का हिस्सा बने तब। तो ऐसी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देकर जहां हर योग्य व्यक्ति को अवसर मिल पाए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आज का युवा डिजिटल दुनिया से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया, मोबाइल एप्स, ऑनलाइन शिक्षा और डिजिटल सेवाएं हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है साथियों। लेकिन क्या हर व्यक्ति इन डिजिटल सुविधाओं का समान रूप से उपयोग कर पा रहा है? यहीं पर डिजिटल समावेशन की आवश्यकता सामने आती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में युवाओं को यह समझना चाहिए कि ऑनलाइन जानकारी केवल उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं होता, उसे अधिक से अधिक लोगों के लिए समझने और इस्तेमाल करने योग्य बनाना भी जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि वीडियो में कैप्शन उपलब्ध कराना, महत्वपूर्ण जानकारी को लिखित रूप से देना, सरल और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल करना और डिजिटल सामग्री को अधिक सुलभ बनाने की कोशिश करना।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि आज का युवा अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जागरूकता फैलाने के लिए भी करे, जागृति जी, तो डिजिटल माध्यम सामाजिक बदलाव का शक्तिशाली माध्यम बन सकता है।
0: बिल्कुल कशिश, और इसी के साथ भाषा से आगे समझने की कोशिश भी बहुत जरूरी है। जैसा कि कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास किसी व्यक्ति से बात करने के लिए सही शब्द नहीं है, लेकिन संवाद केवल शब्दों से नहीं आता श्रोता साथियों। सम्मान, धैर्य, ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश, ये भी संवाद के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो हमारी भाषा में संवाद नहीं कर पाता, तो हमें असहज होकर उससे दूरी बनाने के बजाय ये सोचना चाहिए कि मैं उससे संवाद करने का कोई दूसरा तरीका कैसे खोज सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: यही सोच हमें एक संवेदनशील समाज की ओर ले जाती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ साथियों, आपको कहना चाहेंगे कि सहानुभूति नहीं, सम्मान और साझेदारी चाहिए। यानी कि समावेशी समाज की बात करते समय एक महत्वपूर्ण अंतर समझना बहुत जरूरी है, और वो है सहानुभूति और सम्मान का।
1: बिल्कुल,
0: किसी व्यक्ति को केवल इसलिए दया की नजर से देखना कि वो किसी चुनौती का सामना कर रहा है, ये समावेशन नहीं है। सच्चा समावेशन कहता है कि आप हमारे समाज का हिस्सा है, आपके विचार महत्वपूर्ण है और आपको भी आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है। इसीलिए हमें लोगों के लिए निर्णय लेने के बजाय जहां संभव हो उनसे उनकी जरूरत और पसंद पूछनी चाहिए। ये छोटा सा बदलाव कशिश व्यक्ति को सम्मान और आत्मनिर्भरता दोनों देता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। यही अगर बात करें गांवों और छोटे शहरों के युवाओं की, तो समावेशी समाज की चर्चा केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हमारे गांवों और छोटे शहरों में भी ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें शिक्षा, जानकारी, रोजगार और सार्वजनिक सुविधाओं तक पहुंच में ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल
1: जागृति जी, ग्रामीण युवा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि वे अपने गांव में जागरूकता बैठकें कर सकते हैं, स्कूलों में समावेशी गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर संबंधित संस्थाओं तक लोगों को पहुंचने में मदद भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि सामुदायिक रेडियो जैसे माध्यम भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि वे स्थानीय भाषा और स्थानीय परिस्थितियों में लोगों तक संदेश पहुंचाते हैं।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि आज का युवा जिस समाज की कल्पना करता है वही आने वाले समय का समाज बन सकता है। अगर युवा ऐसी दुनिया चाहते हैं जहां किसी को उसकी कमजोरी के कारण पीछे न छोड़ा जाए तो उन्हें अपने व्यवहार और सोच में बदलाव लाना होगा।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, एक ऐसा समाज जहां सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश हो, अलग क्षमता को कमी नहीं बल्कि विविधता के रूप में देखा जाए, शिक्षा सबके लिए सुलभ हो, रोजगार में योग्यताओं के सुअवसर मिले, डिजिटल दुनिया सबके लिए उपयोगी बने और हर व्यक्ति को सम्मान के साथ अपनी पहचान बनाने का अवसर मिले।
1: बिल्कुल,
0: ये सपना केवल सरकारी संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है श्रोताओं, ये हम सबकी साझी जिम्मेदारी है और युवाओं की इसमें विशेष भूमिका है।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, समावेशी समाज बनाने के लिए हमेशा बड़े बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है, कभी किसी की बात ध्यान से सुनना भी समावेशन है, जैसा कि हमने आपको पहले कहा था।
1: बिल्कुल,
0: किसी को समूह में शामिल करना भी समावेशन है, सांकेतिक भाषा का एक संकेत सीखना भी समावेशन है, किसी की प्रतिभा को उसकी परिस्थिति से ऊपर रखना भी समावेशन है और किसी के लिए नहीं बल्कि सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ने की सोच रखना भी असली समावेशन है। युवा अगर अपनी ऊर्जा, तकनीक, शिक्षा और संवेदनशीलता को सही दिशा दे कशिश, तो वे समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि समानता का अर्थ सबको एक जैसा बनाना नहीं बल्कि हर व्यक्ति को अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ने का अवसर देना है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से कार्यक्रम के अंत में हम हमारे युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, जब हर आवाज सुनी जाती है तभी समाज की आवाज मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल,
1: जब हर व्यक्ति को अवसर मिलता है तभी विकास सच में सबका होता है। युवा बनिए सिर्फ अपने भविष्य के निर्माता नहीं बल्कि एक ऐसे समावेशी समाज की आवाज भी, जहां हर व्यक्ति को सम्मान, संवाद और समान अवसर मिले।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, समावेशी शिक्षा क्या है और ये सांकेतिक भाषा में क्या अंतर होना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: बातें बहुत सारी हो चुकी है और अब समय चला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपको हमारा आज के कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचाइए पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार श्रोताओं, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 FM पर। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जी हां श्रोता साथियों, बचपन सिर्फ पढ़ाई और किताबों तक सीमित नहीं है। बच्चों का स्वस्थ विकास तभी संभव है जब पढ़ाई के साथ उसके दिन में खेलना, पैदल चलना, साइकिल चलाना और दूसरी शारीरिक गतिविधियां भी शामिल हो। आजकल मोबाइल और स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल के कारण बच्चों का बाहर खेलना और शारीरिक रूप से सक्रिय रहना कम होता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम बच्चों को छोटी उम्र से ही सक्रिय रहने की आदत डालें। इसी विषय पर सही और उपयोगी जानकारी देने के लिए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से विषय विशेषज्ञ भी अवश्य जुड़ेंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले विषय से रूबरू करा ही दिया था कि आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चों के पोषण के स्वास्थ्य, उनकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं वो भी क्यों जरूरी है। विषय विशेषज्ञ से आज हम जानेंगे कि बच्चों के लिए पैदल चलना, साइकिल चलाना, खेलकूद क्यों जरूरी है, रोज कितनी शारीरिक गतिविधियां होनी चाहिए और माता पिता बच्चों को सक्रिय रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। बातें ढेर सारी रहेंगी कार्यक्रम के माध्यम से, तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं विषय विशेषज्ञ की बातों को। सर नमस्कार।
1: हाँ जी
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वागड़ रेडियो परिवार में। सर, जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: थैंक यू मैडम, आपने आपके इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। मैं धनेश्वर मेहरा, जिला खेल अधिकारी बांसवाड़ा हूँ और मैं भारतीय तीरंदाजी टीम का कोच भी रहा हूँ इस स्पोर्ट्स के क्षेत्र में।
0: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया है और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि किस तरीके से हम बच्चों को खेल कूद के साथ पोषण के महत्व के बारे में बता सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि बच्चों का जो खान पान है वो अच्छा होने के साथ साथ शारीरिक गतिविधियां होना भी बहुत जरूरी है, तो आप हमें यही बताइए कि बच्चों के लिए पैदल चलना कितना जरूरी है।
1: जी, बच्चों के लिए पैदल चलना बहुत ही फायदेमंद है। यह एक आसान, सुरक्षित और बिना किसी विशेष उपकरण के शारीरिक गतिविधि है ये।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि उसमें कोई किसी प्रकार का उनको उपकरण नहीं चाहिए, ना वो किसी प्रकार का खर्च है और उससे फिर ये अगर पैदल चलते हैं तो एक ये इनकी शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: बच्चों को पैदल चलने के प्रमुख फायदे अपन कहें तो उसमें मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत करता है।
0: बिल्कुल।
1: पहला अगर चीज देखें, उसके बाद है हृदय और फेफड़ों की क्षमता को बेहतर बनाता है। अभी आपने देखा 2 साल पहले कितने भयंकर बीमारी और ये जो महामारी आई थी, तो उसमें जिनके फेफड़े अगर कमजोर रहे तो वो उनका अपन बिना कहे कह सकते हैं उनकी क्या स्थिति बनी है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा अपन कहें कि इनके वजन जो होता है, वेट है, वो नियंत्रण रखने में मदद करता है।
0: बिल्कुल।
1: चौथा पॉइंट कहें तो एकाग्रता और मानसिक स्वास्थ्य में अच्छा है। पांचवी चीज अगर अपन देखें तो नींद की गुणवत्ता बेहतर हो जाती है। अब अगर कहते हैं नींद अगर पूरी है तो उसका जितनी भी जो दिनचर्याएं बनी हुई है वो सारी बहुत अच्छे से कर ले सकते।
0: बिल्कुल सर।
1: हाँ, इसी चीज जो मेन अगर इसमें कहें तो रक्त संचार और कभी सक्रिय रहता है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे नॉर्मल जैसी चीजें हैं तो रक्त संचार भी होता रहता है।
0: जी हाँ। तो सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बच्चों के लिए पैदल चलना कितना जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि साइकिल चलाने से क्या स्वास्थ्य लाभ हमारे बच्चों को मिल सकते हैं।
1: साइकिल, देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य के लिए लाभ ही है, क्योंकि साइकिल चलाना बच्चों और बच्चों के साथ बड़ों दोनों के लिए बहुत लाभदायक है।
0: जी जी।
1: जब बच्चों की बात करते हैं तो वही पैरों और मांसपेशियों को मजबूत करता है। जब साइकिल का पैदल चलता है तो उसके मांसपेशी और पैरों दोनों की जो है उसको मजबूत करता है। उसके वही चीज वापस पैदल में मैंने बताया था कि हृदय और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है।
0: बिल्कुल।
1: वजन इत्यादि को भी वो नियंत्रण में रखता है। शारीरिक ताकत और सहन शक्ति बढ़ाता है। यह बहुत ही अच्छी चीजें हैं। साइकिल चलाना आप बहुत कम देखने मिलता है, लेकिन ये देखिए इसके साथ साथ शरीर को संतुलन और तालमेल बनाए रखता है। साइकिल चलाते 2 पहियों के ऊपर चलते हैं तो साइकिल चलती है तो उसका तालमेल, एकाग्रता और इसको संतुलन बनाए रखता है। तनाव कम करने और मन को प्रसन्न करने में यह भी मदद करता है।
0: बिल्कुल सर। तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों को मोबाइल छोड़कर बाहर खेलने के लिए हम कैसे प्रेरित कर सकते हैं।
1: ये आज की जो ऐसी स्थितियां बन गई है कि बच्चे टीवी मोबाइल के सामने ऐसे वो हो जाते हैं कि उनसे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये इन बच्चों के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे मोबाइल है, अब इसको दूर करना है, उससे हटाना है बच्चे को, तो बच्चे की पसंद का खेल चुने। ऐसा बच्चे को आप वो मोबाइल चलाता है, मोबाइल चलाते चलाते अपन विचार करें ये क्या मोबाइल में खेल रहा है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे ही थोड़ी सी उसके पसंद को देखें। जैसे

0: उसके पीछे खेलने के लिए राजी हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से अगर छोटे छोटे उसके पसंद के खेल, आप उस खेल को ऐसा नहीं माने कि उसको खेल में ऊंचाई तक बोले जाए, नहीं नहीं नहीं, उसके पसंद है बस, इसलिए बोल के पीछे दौड़ना है तो वो दौड़ना शुरू कर देगा, खेलना है तो खेलना शुरू करता है। तो इस तरह का करके और उसको मोबाइल से हटके और खेल की तरफ बढ़ाया जा सकता है।
1: बिल्कुल। तो सर, जैसा कि हम बहुत अच्छी बातें कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं, तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो खेल और शारीरिक गतिविधियां कम करने लगे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है?
0: इसमें अब देखिए मैडम, एक शारीरिक गतिविधि ये जितनी सक्रिय रहेगी, तो इसको कम से कम अगर मान ले 3 से 4 साल का बच्चा है तो उसको कम से कम अपन ये माने कि 60 मिनट तक तो कुछ न कुछ ऐसी शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए, जैसे घंटा भर वो ऐसी शारीरिक गतिविधि करें जैसे इसको खुद को पता नहीं चल पाए मैं क्या क्या कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: कहाँ से किधर दौड़ रहा हूँ, कहाँ से किधर जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो उसको कुछ ऐसी चीजें, छोटे बच्चे होते हैं उनको साइकिल चलाने का बहुत शौक होता है, पीछे वो गिरे नहीं इसके लिए दोनों साइडों में वो टायर लगा दिए, उसको लाके दे दिए कुछ इसको और अच्छे डेकोरेटिव बना के दे दिया, तो उसको वो चीज अपने आप ऐसी वो करते हुए घंटा भर कैसे निकल जाएगा शारीरिक गतिविधि करते करते, उसको खुद को पता नहीं चलेगा।
1: बिल्कुल जी सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से बच्चों की शारीरिक गतिविधियां कम होने के पीछे कारण क्या है और किस तरीके से बच्चों को शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए, यही सर बच्चे के शारीरिक विकास में खेलकूद के साथ संतुलित पोषण की क्या भूमिका है?
0: ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि खेल है, अब वो बच्चा सपोज करो घंटा भर कंटिन्यू इधर से उधर खेल रहा है, तब उसको ये पता नहीं रहता है कि मुझे अपने आवश्यकता अनुसार कितना क्या विटामिन अपने शरीर में गया।
1: बिल्कुल।
0: तो उस समय ये ध्यान में रखें कि जैसे एक तो पेय पदार्थ है मेन चीज, उस समय तो ज्यादा कुछ चीज नहीं, पेय पदार्थ है तो पेय पदार्थ के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें जैसे ग्लूकोन डी हो गया, नींबू पानी हो गया, इस तरह की जो है वो उसको समय अनुसार अगर समय समय पर मिल जाता है तो उसका शरीर जिस तरह का वो शारीरिक गतिविधि कर रहा है, अपने में क्षमता है और जो वर्क कर रहा है उसको वापस उसी अनुसार बनाए रखने के लिए इस तरह की चीजें अगर उसको मिल जाती है
1: जी जी,
0: तो शरीर के अंदर में और ज्यादा ऊर्जावान वो बनता जाएगा और जो कुछ खेलेगा वो और अच्छा सा खेल सकेगा।
1: बिल्कुल। तो सर, खेलने से पहले और खेलने के बाद बच्चों को किस तरीके का पौष्टिक भोजन देना बेहतर रहता है?
0: ये बहुत ही खेलने से पहले और खेलने के बाद में, अब अगर खेलने से पहले है तो उसको बहुत लाइट वेट का आहार दिया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: लाइट वेट का इसलिए कि उसकी जो गतिविधि है खेल की गतिविधि, उसमें अगर उससे ज्यादा दे दिया तब उस गतिविधि को फर्क पड़ जाएगा, वो अच्छा सा कर नहीं पाएगा। इसलिए ये ध्यान रखा जाए कि उसको कम मात्रा में, लेकिन शरीर की उसमें जो आवश्यकताएं हैं शारीरिक वर्क जो करेगा उसमें कुछ उसको आवश्यकताएं वो पूर्ति हो जाए, इतना कर दिया जाए, उसके बाद में जब वो खेल खेलना बंद करता है, बंद करने के बाद में फिर उसको जितना अपन ने खेल शुरू करने से पहले दिया था उससे अधिक मात्रा में जितने उसको आवश्यकता लगती है, हाँ ये अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया, अब ये खाना मेरे लिए उचित होगा, तो उसको थोड़ा सा पहले अपन ने लिक्विड वगैरह इस तरह की चीजें दे दी।
1: बिल्कुल।
0: अब उसके बाद में उसको थोड़ा सा जो शरीर के लिए जैसे कितने कैलोरीज उसकी बर्न हुई है, उस कैलोरीज को वापस बनाए रखने के लिए कितनी चीजें, ये थोड़ा सा जो अपना इसका न्यूट्रिशन है उनसे थोड़ा सा राय लेते हुए शरीर को आवश्यकता जितनी है वो चीज उसको मिल जाए।
1: बिल्कुल। तो सर, क्या पर्याप्त पोषण के बिना केवल खेलकूद से बच्चों का सही शारीरिक विकास संभव है?
0: नहीं, उसको दोनों ही चीजें आवश्यक हैं। उसको उस मात्रा में जिस मात्रा में उसको आवश्यक है पौष्टिक आहार उसको देनी होगी, अगर नहीं देते हैं तो वो फिर एक छोटा सा रूप लेते हुए एक शरीर के अंदर में उसकी बीमारी का घर भी बनता है, क्योंकि उसको अगर पौष्टिक आहार नहीं, तो जितने दिन खींच पाएगा उतनी खींचेगा, उसके बाद में जो उसका क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो तब ये पता नहीं चल पाएगा यार, ये पहले तो खूब अच्छा सा ये सारी गतिविधियां

0: कर लिया करता था, आज उतने क्यों नहीं कर पा रहा। तो उसका ये है कि सही मात्रा में पौष्टिक नहीं मिलना है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए न्यूट्रिशन से राय लेते हुए जितनी आवश्यकता है, जितना वर्क कर रहा है उसके अनुरूप उसको मिलना आवश्यक है।
1: बिल्कुल, यही सर अब मैं जानना चाहूंगी कि ग्रामीण बच्चों के लिए स्थानीय और आसानी से उपलब्ध कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो उनकी ऊर्जा और पोषण की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
0: सबसे पहले तो ये है कि ग्रामीण बच्चों को आज ये जो है ये सारी, अगर अपन कहें कि बहुत अच्छे से पौष्टिक आहार मिल जाए, वो मिल जाए, वो ये सारी चीजें नहीं मिल पाती है। इसलिए तो कहते हैं कि ग्रामीण बच्चों और शहरी में थोड़ा अंतर है। वो क्यों दिखता है? वो इसलिए कि ग्रामीण बच्चा होता है, उसको अगर पैदल चलने के लिए कहें तो 5-7 किलोमीटर तो उसको कोई असर ही नहीं पड़ता है, और ये तो बहुत इजी हो जाता है। इसके साथ में इसका जो औषध जो अपन उसको खाने का ये जो है वो थोड़ा सा किसी न किसी रूप में सुधार हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो वो अगर इतना सा सुधार हो जाए तो वो शारीरिक दृष्टि से शहर के बच्चों से भी काफी अच्छा वर्क करने लगता है।
1: बिल्कुल, तो सर यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बच्चों में कमजोरी या खून की कमी होने पर उनकी खेल गतिविधियां और शारीरिक क्षमता पर क्या असर पड़ता है?
0: ये मैं आपको बताएं कि अगर बच्चे के शरीर में खून की कमी या इस तरह की रहती है तो वो जिस किसी भी खेल की तरफ में है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। और ये खून की कमी जैसी बीमारियां है ये आती है, वो तभी आती है जब उसको सही मात्रा में पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। अगर सही मात्रा में पौष्टिक आहार मिले और उतना ही ये वर्क हो रहा है तो उस कार्य को बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से करते हुए आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल,
0: ये चीजें आती है वो तभी आती है कि उसका शारीरिक वर्क तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसके अनुरूप उसको
1: पोषण नहीं मिलता है।
0: पोषण नहीं मिलने से ये चीजें
1: जी सर। तो जैसा कि सर आपने हमें बहुत अच्छी बात से अवगत करवाया है कि पैदल चलना, साइकिल चलाना, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ बचपन का क्या महत्व है और किस तरीके से हमारे जो बच्चे हैं वो शारीरिक गतिविधियों के साथ पोषण का भी ध्यान रख सकते हैं, यहीं हम देखते हैं कि इसमें माता पिता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो माता पिता ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे वे बच्चों की शारीरिक गतिविधि के साथ पोषण का भी ध्यान रख सके?
0: मैं सभी बच्चों के, खिलाड़ियों के माता पिता को मेरा प्रणाम करते हुए मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि स्वस्थ बच्चा सशक्त समाज, ये एक ही लाइन का ये जो है। अब इसमें क्या है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ साथ नियमित गतिविधि और खेलकूद भी अत्यंत आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये चीज अगर अत्यंत आवश्यक इतना अपन ने किया जाए तो अब ये बच्चा इन चीजों में कैसे सक्रिय रहेगा? तो इस जगह पे माता पिता को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा सही नींद ले पा रहा है कि नहीं है, वो शारीरिक जो वर्क कर रहा है उसके अनुसार उसको पोषण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जैसे अभी जो उससे पहले आपने पूछा था मोबाइल के लिए उसको कैसा दूर करें, तो ऐसी स्थिति में वो है तो माता पिता को बच्चे के हरकत में बच्चे के साथ मिलके इन चीजों से कैसा दूर रखेंगे। ये माता पिता जब साथ में जुड़ जाएंगे ना तो ये चीजें बच्चा अपने आप दूर रखने लग जाएगा और अच्छा एक स्वस्थ जो बच्चा है उसकी ओर वो बढ़ेगा। तो माता पिता से मैं यही दोबारा कहना चाहूंगा कि बच्चे को उसका विशेष ख्याल रखें, उसकी हर गतिविधि को ध्यान में रखें कि वो क्या कर रहा है, और अगर उसको यूं लगता है कि इस जगह पे ये गलत जगह पहुंच रहा है तो उसको साथ में मिलके और अच्छाइयों की तरफ में उसको ले जाने में विशेष महत्व रखता है वो रखें।
1: बिल्कुल, तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू आपने आपके इससे मुझे जोड़ा।
1: श्रोता साथियों, अभी हम सब ने विशेषज्ञ से जाना कि बच्चों के स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए शारीरिक गतिविधियां कितनी महत्वपूर्ण है। पैदल चलना, साइकिल चलाना, खेलना या रोज कुछ समय बाहर सक्रिय रहना, ये छोटी छोटी आदतें बच्चों के विकास में बड़ा योगदान देती है। बच्चों को हर समय मोबाइल या स्क्रीन में व्यस्त रखने के बजाय उन्हें खेलने, चलने और अपनी पसंद की शारीरिक गतिविधि करने का अवसर दें। साथ ही माता पिता खुद भी सक्रिय रहकर बच्चों के सामने अच्छा उदाहरण बन सकते हैं। याद रखिए कि स्वस्थ आदतों की नींव बचपन में ही रखी जाती है। आज बच्चे जितना सक्रिय रहेंगे उतना ही स्वस्थ और आत्मविश्वासी होकर आगे बढ़ेंगे। तो श्रोता साथियों, बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही अब हम हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेना चाहेंगे और आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। तो आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: ભાઈન બોનુ ગીત તો આશુ પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણે મન સ્વાગત કરો હો અમારે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈન બોનુ અમે આપને ગીત કે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે આપણે બારિશની બાદ જે પશુ હિ એને બદલે હુકાચારાની વ્યવસ્થા હળતે કરો અને એને સાથે ભંડારણ હેતે કરી શકો તો અણા વિશે માટે જાણકારી અલવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી મનીષજી. તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લાયણાની વાત અને મોરેકર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્તે અંજલિ જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: આપકા ઓર વાગડ રેડિયો કા બહોત બહોત ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જોડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ કે બારિશ કે બાદ પશુધન હેતુ સૂખે ચારે કા સંગ્રહણ ઓર ભંડારણ હમ કૈસે કરેં. ક્યુંકી હમ દેખતે હૈ કે પશુ કે લિયે ચારે કા ભંડારણ કરના હમારે લિયે બહોત જરૂરી હૈ ક્યુંકી પશુ સે મિલને વાલા જો ઉત્પાદ હૈ વો હમારે રોજમર્રા કે જીવન મેં કામ आता है और आय का प्रमुख स्रोत भी है. तो ऐसे में आप सबसे पहले हमें यही बताइए कि इसका क्या महत्व है.
1: जी बिल्कुल. तो सुनने वाले सभी किसान साथियों, अगर हम बात करें तो वागड़ में खेती और पशुपालन ये एक दूसरे के पूरक हैं. आदिवासी बहुल क्षेत्र में अधिकांश किसान वर्षा आधारित और हांगड़ी खेती करते हैं.
0: बिल्कुल.
1: यहाँ पशुधन परिवार की आजीविका, पोषण और आर्थिक सुरक्षा का एक आधार है, जिसमें गाय, भैंस, बैल, बकरी और अन्य पशुधन परिवार की जरूरतों के अनुसार दूध, कृषि कार्य, जैविक खेती और आय के विभिन्न स्रोत उपलब्ध कराते हैं.
0: बिल्कुल.
1: बारिश के समय खेतों की मेड़ों पर, चारागाहों पर, जंगल में या खाली पड़ी पहाड़ियों पे जो चारा उगता है वो चारा पर्याप्त मात्रा में हमारे पास उपलब्ध रहता है. इस समय पशुधन की चराई के माध्यम से भी उनको पर्याप्त आहार मिलता है. लेकिन हम देखते हैं कि बारिश खत्म होने के बाद धीरे धीरे हरे चारे की उपलब्धता कम होने लगती है.
0: बिल्कुल.
1: खेतों में फसल कटने के बाद बड़ी मात्रा में जो कृषि अवशेष बचता है वो भी हमारे पशुधन के लिए सुखा के इकट्ठा किया जाता है, ताकि इसके बाद के दिनों के लिए हमें पशुधन के लिए चारे की कोई अन्य व्यवस्था न करना पड़े.
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि पशुधन का जो चारा है उसका क्या महत्व है और किस तरीके से संग्रहण और भंडारण करने की जरूरत है, यही अब मैं सर जानना चाहूंगी कि बारिश के बाद सूखे चारे का संग्रहण क्यों आवश्यक है.
1: बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है किसान साथियों कि बारिश के बाद सूखे चारे का संग्रहण.
0: बिल्कुल.
1: क्योंकि बारिश जब तक होती है तब तक तो हमारे पास हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है.
0: जी जी.
1: और हमें अपने पशुधन के लिए उनके पोषण या खाने के लिए किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती, उसके लिए हमें सोचना नहीं पड़ता. पर जब बारिश खत्म होती है, हरा चारा कम होता है या कुछ समय के बाद वो खत्म हो जाता है.
0: बिल्कुल.
1: तो खेतों में उपलब्ध एक तो हमारे जो कृषि अवशेष हैं वो अक्सर खुले में पड़े रहते हैं. कई बार उनको कुछ सोच के साथ वैसा ही कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है. दूसरी ओर परिवार के पास पशुओं की संख्या कहीं ज्यादा होती है तो कहीं कम होती है और उसमें जो चारे की कमी पैदा होती है, इस कमी को पूरा करने के लिए हमें बारिश के बाद सूखे चारे का संग्रहण जरूरी हो जाता है.
0: बिल्कुल.
1: यदि बारिश के बाद उपलब्ध चारे को समय पर एकत्रित करके सुरक्षित रखा जाए तो हम पशुधन के लिए कई महीनों का चारा सुरक्षित रख सकते हैं. गर्मी और सूखे मौसम में चारे की कमी की समस्या से निपटा जा सकता है.
0: बिल्कुल.
1: पशुओं को केवल चराई पर निर्भर नहीं रहना पड़ता. बाजार से चारा खरीदने पे होने वाले खर्च से बचा जा सकता है और खेतों में जो उपलब्ध कृषि अवशेष हैं या फसल अवशेष हैं उनका बेहतर उपयोग हो सकता है.
0: बिल्कुल.
1: यही चारा पशुओं के पोषण और उत्पादन को बनाए रखने में भी हमें मदद करता है और परिवार को कठिन मौसम में अपने पशुधन के लिए पोषण व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम बनाता है.
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने ये बताया कि किस तरीके से बारिश के मौसम के बाद हमें किस तरीके से पशु का जो आहार है उसका संरक्षण करने की जरूरत है, यही अब मैं जानना चाहूंगी कि वागड़ में सूखे चारे के कौन कौन से स्थानीय स्रोत हैं जिन्हें हम हमारे पशुओं के लिए सूखे चारे के तौर पर रख सकते हैं।
1: वागड़ में यदि देखा जाए तो किसान साथियों हमारे पास चारे के कई स्थानीय स्रोत हैं, क्योंकि वागड़ की पारंपरिक खेती व्यवस्था में पशुओं के लिए चारा केवल फसल से नहीं मिलता है। खेत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों के अवशेष तो इसमें शामिल है ही, इसी के साथ खेत की मेड़ों पर उगने वाला चारा, जंगल में मिलने वाला चारा, पहाड़ियों या खाली जमीन पे उगने वाली घास और स्थानीय रूप से मिलने वाली अन्य घास भी हमारे महत्वपूर्ण संसाधनों में शामिल है। अगर हम देखें तो मक्का या अन्य फसल के अवशेष, ज्वार या बाजरा की चरी जो अक्सर बारिश की खेती के बाद नमी में ही पैदा हो जाती है, गेहूं का भूसा, धान के अवशेष, हमारी दलहनी फसलों के अवशेष और स्थानीय रूप से मिलने वाला चारा,
0: बिल्कुल
1: ये सारा बारिश के बाद हमें उपलब्ध हो जाता है। इसको समय पर काट कर सुखा लिया जाए और उचित तरीके से यदि इनका सुरक्षित भंडारण किया जाए तो हमें आने वाले समय के लिए कभी चारे की कमी नहीं होगी।
0: बिल्कुल। तो सर जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से वागड़ में स्थानीय स्तर पर कुछ ऐसे सूखे चारे के स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमें चारे की कमी नहीं होगी, लेकिन अब मैं यही जानना चाहूंगी कि सूखे चारे को सुखाने की सही प्रक्रिया क्या है, क्योंकि चारा तो किसान भाई बहन इकट्ठा कर लेंगे लेकिन अगर उन्हें सही प्रक्रिया का ध्यान नहीं रहेगा तो वो चारा खराब होने की संभावना भी हो सकती है। तो ऐसे में इसकी सही प्रक्रिया क्या है जो हमारे किसान भाई बहनों को पता होनी चाहिए?
1: तो किसान भाइयों, चारा सुखाने के लिए हमें जो सबसे जरूरी चीजें ध्यान रखना है उसमें ये है कि साफ और सूखा स्थान हमें चारा सुखाने के लिए चुनना चाहिए। इसके लिए खलिहान हो सकता है, आंगन हो सकता है, चबूतरा हो सकता है, इन जगहों पे हम चारे को सुखा सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: चारे को सीधे गीली मिट्टी पर नहीं फैलाना है या गीली जगह पे नहीं फैलाकर सुखाना है, इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल।
1: चारे को सुखाने के समय हमेशा पतली परत में फैलाना चाहिए, चारे को लगातार निश्चित समय के बाद पलटाते रहना चाहिए, कहीं भी बारिश या ओस की संभावना हो तो उससे चारे को बचाना चाहिए, यानी कि कम से कम शाम के समय या तो चारे को सुरक्षित स्थान पर वापस रख देना चाहिए अगले दिन सुखाने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: अगर चारे को ढका जाता है तो ये ध्यान रखें कि उसमें हवा आती जाती रहे, उसे पूरी तरह से बंद न कर दें।
0: बिल्कुल।
1: इस तरह से पूरी तरीके से सूखने के बाद हम उसका सुरक्षित भंडारण कर सकते हैं। सूखे चारे का सुरक्षित भंडारण करने से ये लंबे समय तक हमें हमारे पशुधन की पोषण और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर हम बहुत छोटे में बात करें तो चारा भंडारण के तीन सिद्धांत होंगे, नमी से बचाव, गीली जमीन से दूरी और पर्याप्त हवा का आवागमन।
0: बिल्कुल।
1: तो चारे को सीधे जमीन पर भंडारित करने के बजाय लकड़ी, बांस, पत्थर या अन्य किसी सामान से बने ऊंचे स्थान पर रखना चाहिए। हमारे यहाँ एक पारंपरिक व्यवस्था है जिसको हम डागला बोलते हैं, तो डागले पे यदि इसका भंडारण करते हैं तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि इस चारे को सुखाने की प्रक्रिया क्या है जिसका हमें पता होने की जरूरत है, यही चारा सुरक्षा को पशुधन स्वराज से कैसे जोड़ा जाया जा सकता है?
1: किसान भाइयों, वागड़ की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमारा पशुधन स्वराज केवल पशु पालना नहीं है, इसका अर्थ है परिवार अपने पशुधन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे चारा, पानी, देखभाल, स्वास्थ्य और प्रबंधन के लिए स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आत्मनिर्भर बने।
0: बिल्कुल,
1: इसी दृष्टि से बारिश के बाद सूखे चारे का संग्रहण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल,
1: यदि परिवार अपने खेत का चारा पहचाने, समय पर उसे इकट्ठा करे, सही तरीके से सुखाए, सुरक्षित रखे और पशुधन की आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करे।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ यदि जरूरत से ज्यादा चारा हमारे पास है तो हम अपने पड़ोसी परिवार के साथ भी उसे जरूरत पड़ने पर बांटें।
0: बिल्कुल, तो सर जैसा कि आपने कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से हमारे श्रोता साथियों को ये बताया है कि चारे का उचित तरीके से भंडारण करना क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका, वागड़ रेडियो का और सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ભાઈન બોનું સિમકી અવડે આપણે વ્યાસમી મનીષજી જોડે તક હતા ને એના માધ્યમ થકી આપણે ઘણા આકારની વાતને જાણ્યું કે હુકા ચારાનું ભંડારણ કરવું આપણે બદલે કેમ જરૂરી હૈ, આની પ્રક્રિયા શું હૈ ને કયા કયા સ્ત્રોત હૈ આપણે વાગડ ક્ષેત્ર મેં જેને માધ્યમ થકી આપણે હુકા ચારાની વ્યવસ્થા કરી શકો। આશા કરો હો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હૈ આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું, તો સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લાયક ઓર ગીત ને મોરે પડો સૂટા।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग अपना ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया नी निशुल्क जांच करावीसू। है
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार नी गोरीये निशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
3: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी आपसे बातचीत रहने वाली है संवाद सबका अधिकार समावेशी समाज की ओर कदम को लेकर। जैसे कि अंजलि, समाज केवल लोगों के साथ रहने से नहीं बनता बल्कि एक दूसरे को सुनने समझने और साथ लेकर चलने से बनता है।
1: बिल्कुल,
0: जिस समाज में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, उसकी आवाज सुनी जाती है और उसके विचारों का सम्मान होता है, वही समाज वास्तव में मजबूत और समावेशी समाज कहलाता है। संवाद इसी मजबूत समाज की पहली सीढ़ी है।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन के तौर पर सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है संवाद सबका अधिकार समावेशी समाज की ओर कदम को लेकर।
1: बिल्कुल, तो यही जागृति से बात करें कि संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता, संवाद का अर्थ है अपनी बात को सम्मान पूर्वक रखना और सामने वाले की बात को धैर्य पूर्वक सुनना।
0: बिल्कुल,
1: जब दो व्यक्ति अपने विचार अनुभव और समस्याएं एक दूसरे के साथ साझा करते हैं तो उनके बीच समझ पड़ती है और यही समझ परिवार को मजबूत करती है, गांव को जोड़ती है और समाज में विश्वास पैदा करती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि सच्चा स्वराज भी इसी भावना से जुड़ा हुआ है। स्वराज का अर्थ केवल शासन व्यवस्था में भागीदारी नहीं बल्कि अपने जीवन, अपने गाँव, अपने समाज से जुड़े निर्णयों में लोगों की भागीदारी भी है। जब गांव का हर व्यक्ति अपनी बात रख सकता है, सवाल पूछ सकता है, सुझाव दे सकता है और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा बन सकता है, तभी स्वराज की भावना मजबूत होती है।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हमारे आसपास कई तरह के लोग रहते हैं, किसी की उम्र अलग है, किसी का अनुभव अलग है, किसी की जरूरत अलग है और किसी की सोच अलग हो सकती है। यही विविधता समाज को सुंदर बनाती है, लेकिन विविधता के साथ साथ एक दूसरे को समझने की जिम्मेदारी भी आती है। श्रोताओं, कई बार समस्या इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि हम समय रहते बातचीत नहीं कर पाते।
1: बिल्कुल,
0: परिवार में छोटी सी गलतफहमी संवाद के अभाव में बढ़ सकती है, गांव में किसी मुद्दे पर अलग अलग राय हो सकती है अंजलि, लेकिन बातचीत के माध्यम से समाधान भी खोजा जा सकता है। साथियों, संवाद हमें ये सिखाता है कि असहमति का अर्थ दुश्मनी नहीं है, हम किसी व्यक्ति की बात से सहमत न होते हुए भी उसकी बात सुन सकते हैं और उसके सम्मान को बनाए रख सकते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, क्योंकि हर व्यक्ति की आवाज महत्वपूर्ण है। समावेशी समाज की पहचान यही है कि उसमें किसी व्यक्ति की आवाज केवल इसलिए नजरअंदाज न हो कि वह कमजोर है, गरीब है, कम पढ़ा लिखा है या दूर दराज के क्षेत्र से आता है या अपनी बात रखने में संकोच करता है।
0: बिल्कुल,
1: एक किसान के पास खेती का व्यावहारिक अनुभव है, एक बुजुर्ग के पास वर्षों का जीवन अनुभव है, एक युवा के पास नई तकनीक और नए विचार हो सकते हैं, बच्चों के पास अपने आसपास की दुनिया को देखने का अलग नजरिया होता है, महिलाओं के अनुभव और सुझाव भी परिवार और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए विकास की चर्चा जो है वो तब पूरी होती है जब अलग अलग वर्गों की आवाज उसमें शामिल हो।
0: जी हाँ अंजलि, क्योंकि संवाद की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती बल्कि अपने घर से होती है। परिवार में जब बच्चे अपनी बात खुलकर कह पाते हैं और बड़े उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। घर में अगर हर निर्णय केवल एक व्यक्ति की इच्छा से हो और बाकी सदस्यों की बात न सुनी जाए तो धीरे धीरे दूरी बढ़ जाती है। इसके विपरीत ही जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की बात सुनते हैं तो निर्णय अधिक समझदारी से किए जा सकते हैं। बच्चों को अपनी बात रखने का अवसर देना, बुजुर्गों के अनुभव सुनना और परिवार के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं को समझना, ये छोटे कदम परिवार में संवाद की संस्कृति बनाते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, गाँव केवल घरों का समूह नहीं है, गाँव एक समुदाय है जहाँ पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की

0: तो साथियों समावेशी समाज में केवल कुछ लोगों को बोलने का अवसर नहीं मिलता बल्कि कोशिश ये होती है कि हर व्यक्ति तक संवाद का असर पहुंचे।
1: बिल्कुल।
0: जो व्यक्ति अपनी बात आसानी से कह सकता है उसे दूसरों को भी बोलने का अवसर देना होगा। बैठक में केवल कुछ लोग लगातार बोलते रहते हैं, बाकी लोग चुप बैठे रहते हैं, तो संवाद अधूरा रह जाता है। किसी बैठक में शांत रहने वाले व्यक्ति से भी उसकी राय जानना, बुजुर्गों की बात सुनना, युवाओं के सुझाव लेना और बच्चों की जरूरतों को समझना, ये सारी समावेशी सोच के उदाहरण हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही अच्छे विषय पर बात कर रहे हैं कि संवाद सबका अधिकार, समावेशी समाज की ओर कदम को लेकर, तो ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम में यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था संवाद और समान अवसर के बारे में, वहीं बात करें कि सुनना भी संवाद का हिस्सा है।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, हम अक्सर संवाद को बोलने से जोड़ते हैं, लेकिन सच्चे संवाद की शुरुआत सुनने से भी होती है। किसी व्यक्ति की बात पूरी होने से पहले बीच में रोक देना, उसकी समस्या को छोटा समझना या बिना समझे अपनी राय थोप देना संवाद को कमजोर करता है। धैर्य से सुनना सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि उसकी बात महत्वपूर्ण है। कई बार किसी समस्या का समाधान यही होता है कि व्यक्ति को ध्यान से सुना जाए। इसलिए हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या कहना है, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या कहना चाहता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, लोकतांत्रिक समाज में सभी की जो राय है वो एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है। अलग अलग विचार होना स्वाभाविक है। असली चुनौती यह है कि अलग राय होने के बावजूद भी हम सब एक दूसरे का सम्मान बनाए रखें।
1: जी हाँ,
0: यदि किसी मुद्दे पर दो लोगों की राय अलग है तो बातचीत के माध्यम से अपने तर्क रखे जा सकते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी, अपमान या कटु भाषा से समस्या का समाधान नहीं होता। इसलिए सकारात्मक संवाद हमें सिखाता है कि विचारों का विरोध किया जा सकता है, लेकिन व्यक्ति का सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल अंजलि, यही अगर डिजिटल दौर में संवाद को लेकर हमारे श्रोता साथियों से हम बात करें तो हम देखते हैं कि आज मोबाइल और इंटरनेट ने संवाद के नए रास्ते खोल दिए हैं। गांवों में भी लोग व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों से जानकारी साझा कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों ने लोगों की आवाज को दूर तक पहुंचाने का अवसर दिया है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बड़ी है। किसी संदेश को आगे भेजने से पहले उसकी सत्यता जांचना, अफवाहों से बचना और किसी व्यक्ति के बारे में बिना पुष्टि के जानकारी साझा न करना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: डिजिटल संवाद तभी उपयोगी है जब वो लोगों को जोड़ने का माध्यम बने, गलतफहमी और दूरी बढ़ाने का कारण नहीं। साथ ही सामुदायिक रेडियो की बात करें तो हम देखते हैं कि जब समुदाय के लोग अपनी समस्या, अनुभव और सुझाव साझा करते हैं तो रेडियो केवल कार्यक्रम प्रसारित करने वाला माध्यम नहीं रहता, बल्कि समुदाय की आवाज बन जाता है। सामुदायिक रेडियो का उद्देश्य भी यही है कि समुदाय की बात समुदाय तक पहुंचे और लोगों के बीच संवाद की प्रक्रिया मजबूत हो।
0: बिल्कुल जागृति जी, यही इसमें युवाओं की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि युवा समाज की ऊर्जा है, उनके पास नए विचार और तकनीक की समझ भी है। युवाओं को केवल अपनी बात कहने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरों को सुनने की आदत भी विकसित करनी चाहिए। गाँव के विकास से जुड़े विषयों पर युवा बुजुर्गों से अनुभव ले सकते हैं और नई तकनीक के माध्यम से समाधान खोज सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: जब अनुभव और नई सोच साथ आती है तो विकास की नई संभावनाएं बनती है। युवाओं के लिए संवाद नेतृत्व का भी महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा नेतृत्व वही है श्रोता साथियों, जो केवल आदेश देने के बजाय लोगों को सुनता है और उन्हें साथ लेकर चलता है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, हर समस्या का समाधान तुरंत मिल जाए ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन समस्या पर बातचीत शुरू होना अपने आप में समाधान की दिशा में पहला कदम है। गांव में पानी की समस्या हो, विद्यालय से जुड़ी कोई आवश्यकता हो, स्वच्छता का विषय हो या किसानों से जुड़ी कोई चुनौती, लोग मिलकर चर्चा करें तो स्थानीय ग्राम और अनुभव सामने आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार जिस समस्या को कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ी मानता है, सामूहिक बातचीत में उनका व्यवहारिक समाधान निकल आता है और यही सामूहिक सोच स्वराज की ताकत है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसा कि आपने महिलाओं के बारे में बताया, युवाओं के बारे में बताया, साथ ही जाना कि संवाद से समाधान की राह किस तरह से आसान हो सकती है, यही जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। श्रोताओं, समावेशी समाज बनाने के लिए हमें अपने व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव तो लाने होंगे। हमें दूसरों की बात को बीच में रोकने के बजाय ध्यान से सुनना होगा। हमें अपनी राय दूसरों पर थोपने के बजाय विचारों को साझा करना होगा। हमें असहमति का सम्मान करना होगा। हमें ग्राम सभा और सामुदायिक बैठकों में सक्रिय भागीदारी करनी होगी। हमें ऐसे लोगों को भी बोलने का अवसर देना होगा जो सामान्यतः अपनी बात सामने नहीं रख पाते हैं। हमें डिजिटल माध्यमों का जिम्मेदारी से उपयोग करना होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि समाज तभी आगे बढ़ता है जब विकास की यात्रा में कोई पीछे न छूटे।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज केवल अधिकारों की बात नहीं करता श्रोताओं, बल्कि जिम्मेदारियों की भी बात करता है। अपनी बात रखने का अधिकार है तो दूसरों की बात सुनने की जिम्मेदारी भी है। निर्णय में भागीदारी का अधिकार है अंजलि, सामूहिक हित के बारे में सोचने की जिम्मेदारी भी है। जब लोग अपने गांव की समस्याओं पर मिलकर विचार करते हैं, समाधान खोजते हैं और निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो लोकतंत्र जमीन पर मजबूत होता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वराज की असली ताकत किसी एक व्यक्ति में नहीं होती श्रोताओं, बल्कि जागरूक और सहभागी समुदाय में होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि एक आवाज अकेली हो सकती है, लेकिन जब अनेक आवाजें संवाद के माध्यम से जुड़ती हैं, तो वही आवाज समाज की शक्ति बन जाती है।
1: बिल्कुल,
0: जिस घर में संवाद है वहाँ रिश्तों में समझ पड़ती है, जिस गांव में संवाद है वहाँ समस्याओं के समाधान की राह खुलती है, जिस समाज में संवाद है वहाँ भेदभाव की जगह भागीदारी और दूरी की जगह अपनापन पैदा होता है। इसलिए संवाद केवल बोलने का माध्यम नहीं, साथ चलने की संस्कृति है। हम ऐसा समाज बनाएं जहाँ कोई आवाज अनसुनी न रहे, कोई व्यक्ति अपनी बात कहने से वंचित न हो और किसी की राय को केवल इसलिए छोटा न समझा जाए क्योंकि वह अलग है। क्योंकि जब हर व्यक्ति बोलता है, हर व्यक्ति सुनता है और हर व्यक्ति की भागीदारी होती है तभी लोकतंत्र मजबूत होता है।
1: बिल्कुल,
0: और सच्चे स्वराज की राह गांव-गांव तक पहुंचती है। इसलिए श्रोता साथियों, संवाद बढ़ेगा तो समझ बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी तो सहभागिता बढ़ेगी और सहभागिता बढ़ेगी जागृति जी तो सच्चा स्वराज मजबूत होगा।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम घूमर हमरवारी अमर हित्ते बुनने आपनी बुन मनीषा ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। होवे भाइयों बुनो आप सब हमली रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम घूमर में।
1: होवे भाइयों बुनो लेने हाजिर थे क्यों हो हमारे टाइम माते कार्यक्रम घूमर ने लेनी एक नवा विषय ने हाथे। मनीषा बुन आज भी आपने बात करवा जा रहा हूँ आपड़े गाँव आपड़ी संस्कृति ने आपड़े जीवन तकी जुड़ियो एक एवो विषय जे आपड़ी परंपरा भी है हुनर भी है ने रोजगार नी संभावना भी है। आपने देखो हो कि आदिवासी क्षेत्र में प्रकृति केवल आपड़े आय पाय नो हिस्सो ज नथी बल्कि आपड़ी रोजमर्रा नी जिंदगी तकी जुड़ियो तको है। जंगल पेड़ पौधो मिट्टी बीज बांस ने कई प्रकार नी प्राकृतिक सामग्री आपड़े जीवन ने परंपरा नो हिस्सो रही है। इनमें तकी एक है बांस। बांस तकी आपड़ा गाँव में घणा जे मन कहे ये वर्षो पहले तकी टोकरी सूप डलिया टोकना घरेलू उपयोग नी घणा कानी अलग अलग चीजे आपड़े हाथ तकी बनावता आवे हो पर आज ना टाइम में आपड़े देखी रहो के आज जे पारंपरिक हुनर है ये धीरे धीरे नवो रूप ले रो है।
0: होवे
1: आयनु साधन तकी जुड़ाचु है खास करीने आदिवासी जे बोने है ये आपड़ा पारंपरिक ज्ञान ने हाथ ना हुनर ने बाजार ने जरूरत तकी जोड़ी रही है ने घरे बैठे तके नाना स्तर तकी शुरुआत करी ने आपड़ी आय ने वधावी रही है। तो आज आपणे इस वात करंगा के हाथनु आपड़ी जे बुननु हुनर है इन तकी बांस तकी ई कई कई चीजे बनावी सके ने आय नो नवो रास्तो निकाली सके।
0: होवे अंजलि बोन तो आना विषय माते आपड़े भाई बोन खाते घणा अक्का नी वाते रेंगा पण कार्यक्रम नी शुरुआत में हामळा गीत ने मोरे कर आपड़ी वाते।
1: होवे तो भाई बोनो आप हमरते रेजू आपड़ू रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितली शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, कभी कभी जिंदगी में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारी बात समझ ही नहीं पाता। हम समझना चाहते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम चाहते हैं कि कोई हमारी खामोशी के पीछे छिपे बात को समझे, लेकिन सामने वाला सिर्फ बात सुनता है, हमारी भावनाएं नहीं। और तब मन में एक सवाल उठता है कि मैं आखिर खुद को किसे समझाऊं? कभी परिवार में ऐसा होता है तो कभी दोस्तों के बीच, कभी काम की जगह पर तो कभी कभी उन लोगों के साथ भी जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। हम बोलते हैं कि तुम मुझे समझते क्यों नहीं, लेकिन क्या हर बार किसी दूसरे का हमें समझना जरूरी है? क्या हमारी शांति इस बात पर निर्भर करनी चाहिए श्रोता साथियों कि दूसरा व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझे या नहीं? और अगर कोई हमें समझ ही न पाए तो क्या हम खुद को गलत मान ले या फिर खुद को संभालना सीखें? इन्हीं सवालों के साथ आज के सपनों की उड़ान में हम बात करेंगे कि जब कोई हमें समझ न पाए तब खुद को हम कैसे संभालें। तो बातें हमारी इस विषय पर आपसे ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि मैंने आपको गीत से पहले विषय से रूबरू करा ही दिया था कि आज हमारी बातचीत होने वाली है कि जब कोई हमें समझ न पाए तब खुद को कैसे संभाले। जी हाँ श्रोता साथियों, हर इंसान की अपनी कहानी होती है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सामने वाला हमें केवल उतना ही देख सकता है जितना हम उसे दिखाई देते हैं। हमारे चेहरे को देख सकता है लेकिन हमारे भीतर की लड़ाई नहीं। वह हमारी चुप्पी देख सकता है लेकिन उसके पीछे की वजह नहीं। वह हमारा गुस्सा देख सकता है लेकिन शायद यह नहीं जानता कि उस गुस्से के पीछे कितनी निराशा जमा है। वह हमारी मुस्कान देख सकता है लेकिन यह जरूरी नहीं कि उसे पता हो कि उस मुस्कान के पीछे कितनी चिंता छिपी है। इसलिए श्रोता साथियों, जब कोई हमें समझ नहीं पाता तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि उसे हमारी परवाह नहीं है। कई बार उसके पास हमारी पूरी कहानी ही नहीं होती और कई बार हम अपनी बात उस तरह कह नहीं पाते जिस तरह हम महसूस करते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपने ही हमें नहीं समझे। जी हाँ, किसी अनजान व्यक्ति का हमें न समझना शायद इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन जब कोई अपना ही हमारी बात न समझे तब मन ज्यादा दुखता है। हम सोचते हैं कि अगर ये भी मुझे नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। यही से अकेलापन महसूस होने लगता है। जी हाँ, हम बातचीत कम कर देते हैं, मन की बातें अपने अंदर रखने लगते हैं और कभी कभी बिना वजह चिड़चिड़ापन आने लगता है और धीरे धीरे हम यह मानने लगते हैं कि शायद हमारी भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन हमें यहाँ एक बात समझनी होगी कि किसी का हमें न समझ पाना हमारी भावनाओं को गलत साबित नहीं करता। अगर आपको किसी बात से दुख हुआ है तो आपका दुख वास्तविक है। अगर आपको किसी परिस्थिति से डर लगा है तो आपका डर वास्तविक है। अगर आपको किसी बात से खुशी मिलती है तो वह खुशी भी वास्तविक है। हर भावना को सामने वाले की स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। श्रोता साथियों, जब कोई हमें नहीं समझता तो सबसे पहली जरूरत होती है खुद को समझने की। क्योंकि कई बार हम दूसरों से चाहते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन हमने खुद अपने मन को समझने की कोशिश ही नहीं की होती। हमें खुद से पूछना चाहिए कि मुझे वास्तव में दुख किस बात से होता है। क्या किसी के शब्दों से, क्या किसी के व्यवहार से, या क्या मेरी उम्मीद पूरी नहीं हुई, क्या मुझे नजरअंदाज किया गया, क्या मुझे लगा कि मेरी मेहनत की कद्र नहीं हुई, या फिर मैं पहले से ही किसी तनाव में था और छोटी सी बात ज्यादा बड़ी लग गई। श्रोता साथियों, जब हम अपनी भावनाओं की वजह पहचान लेते हैं तब मन थोड़ा साफ होने लगता है। जिंदगी में बहुत सारी ऊर्जा इस बात में हम लगा देते हैं कि मैं सही हूँ या सामने वाले को समझना ही नहीं है। हम बार बार अपनी बात समझाते हैं, उदाहरण देते हैं, पुरानी बातें याद दिलाते हैं, अपनी सफाई देते हैं, साथ ही कई सारी चीजें हम उन्हें कहते हैं, लेकिन सामने वाला फिर भी नहीं समझता। तब हमें रुक कर सोचना चाहिए कि क्या मुझे हर व्यक्ति को अपनी बात साबित करनी ही है। नहीं, क्योंकि दोस्तों, हर व्यक्ति हमारे नजरिए से सहमत हो यह जरूरी नहीं। कभी कभी अपनी बात कह देना पर्याप्त होता है, उसके बाद सामने वाला उसे समझे या न समझे यह हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम अपनी बात को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों की समझ को कभी भी नहीं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम बात कर रहे हैं कि बहुत सी बार बहुत से लोग हमारी बातें समझ नहीं पाते, तो क्या हमें उस चीज को लेकर निराश होने की जरूरत है या हमें खुद को समझना चाहिए। श्रोता साथियों, अपने बात कहने का तरीका भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि जब कोई हमें न समझे तो हम चुप होकर सब सहते रहें। नहीं, अपनी बात कहना जरूरी है, लेकिन आरोप लगाकर नहीं, अपनी भावना बताकर। उदाहरण के लिए, तुम कभी मुझे समझते ही नहीं की जगह कहा जा सकता है, जब ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि मेरी बात सुनी ही नहीं जा रही। मैं चाहती हूँ कि मेरी बात एक बार शांत होकर सुनी जाए। दोनों वाक्यों में फर्क देखिए। पहले वाक्य में सामने वाला खुद को कटघरे में महसूस कर सकता है, दूसरे वाक्य में श्रोता साथियों हम अपनी भावना बता रहे हैं। कई बार सामने वाले को हमारी भावना समझने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि हमारी बात शिकायत के रूप में पहुंचती है। इसलिए सही भावना को सही शब्द देना भी एक कला है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति की भाषा अलग अलग होती है और हर व्यक्ति हमारी भाषा समझे ये जरूरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ भाषा का मतलब केवल शब्दों की भाषा नहीं, हर व्यक्ति भावनाओं को अलग तरीके से समझता है। कोई प्यार शब्दों से जताता है, कोई काम करके, कोई समय देकर, कोई चिंता करके, तो कोई चुपचाप साथ खड़े रहकर। इसलिए जरूरी नहीं है कि सामने वाला उसी तरीके से भावनाएं दिखाए जिस तरीके से हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर उसे मेरी परवाह होती तो वह ऐसा करता, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला अपनी तरीके से परवाह कर रहा हो। इसलिए रिश्तों में एक बात जरूरी है कि सिर्फ यह मत देखिए कि सामने वाला क्या नहीं कर रहा, ये भी देखिए कि वो अपने तरीके से क्या कर रहा है। जी हाँ श्रोता साथियों, ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने अपनी बात शांत होकर समझाई, बार बार समझाने के बाद भी सामने वाला जानबूझकर हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, हमारी बात का मजाक उड़ाता है, हमारी हर भावना को गलत बताता है, तो हमें हर बार खुद को ही दोष नहीं देना चाहिए। किसी रिश्ते में समझ और सम्मान दोनों तरफ से जरूरी होते हैं। हमें ये सीखना होगा कि दूसरों को समझाना जरूरी है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। अपनी शांति बचाना भी जरूरी है, अपनी सीमाएं तय करना भी जरूरी है। कभी कभी थोड़ी दूरी लेना भी जरूरी हो सकता है, ताकि भावनाएं शांत हो और हम बेहतर तरीके से सोच सके। अब बात आती है कि इन सारी चीजों में हम

को कैसे संभालें। श्रोता साथियों, जब मन में बहुत कुछ चल रहा हो, लगे कि कोई समझ नहीं पा रहा, तब तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय कुछ छोटी चीजें की जा सकती हैं, जैसे कि हर बात का जवाब उसी क्षण देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मन बहुत भरा होता है, उस समय बोले गए शब्द बाद में पछतावा दे सकते हैं, इसलिए थोड़ा समय लीजिए। अपने मन की बात कागज पर लिखिए। मुझे किसी बात ने दुख दिया। कई बार लिखते लिखते हमें खुद अपनी समस्या समझ आने लगती है। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का समाधान अकेले ढूंढना जरूरी नहीं है। कोई भरोसेमंद दोस्त, परिवार का सदस्य, शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति हमारी बात सुन सकता है, इसलिए कभी कभी समाधान से पहले सिर्फ सुना जाना भी बहुत राहत देता है। इसी के साथ बात आती है, खुद को दोष देना बंद करें, क्योंकि दोस्तों किसी का आपको न समझना हमेशा आपकी गलती नहीं होती। हर गलत फहमी की जिम्मेदारी अकेले अपने ऊपर मत लीजिए। आप अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं, अपना व्यवहार नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सामने वाला आपके बारे में क्या सोचेगा, इसे हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। श्रोता साथी, एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी कि मान लीजिए कि एक युवा अपने गांव में कोई नया काम शुरू करना चाहता है। वह परिवार को अपनी योजना बताता है, परिवार डर जाता है और कहता है यह काम मत करो, पता नहीं सफल होगा या नहीं। युवा को लगता है कि कोई मुझे समझता ही नहीं, लेकिन अगर वह तुरंत नाराज होकर सब छोड़ दे तो शायद उसे पछतावा हो। वह परिवार की चिंता को समझ सकता है, अपनी इच्छा को भी समझा सकता है। वह कह सकता है कि आपकी चिंता अपनी जगह सही है, लेकिन मैं इस काम को समझकर छोटी शुरुआत करके देखना चाहता हूँ। यहाँ उसने न तो अपनी इच्छा छोड़ी और न ही परिवार की चिंता का मजाक बनाया। यहीं से शुरू होता है संतुलित जीवन। जी हाँ, कभी कभी हमें लगता है कि हमें कोई नहीं समझता, लेकिन शायद हम खुद को भी ठीक से नहीं समझ पा रहे होते हैं। हम चाहते कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं और कह कुछ और रहे हैं, और उम्मीद कर रहे हैं कि सामने वाला हमारे मन की असली बात समझ जाए। ऐसा हमेशा संभव ही नहीं है श्रोता साथियों, इसलिए खुद से ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जो महसूस कर रहे हैं उसे पहचानिए, जो कहना है उसे स्पष्ट कीजिए, जो बदल सकते हैं उसे बदलिए, और जो आपके नियंत्रण में नहीं उसे स्वीकार करना सीखिए। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत ही अच्छी बातें रही हैं कि किस तरीके से बहुत सी बार बहुत से लोग हमें समझ नहीं पाते, तो उस समय हम खुद को कैसे संभालें। आशा करती हूँ कि ये बातें आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेना चाहेंगे। आशा करेंगे कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातचीत रही है वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सपनों की उड़ान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनाओ पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मलिन जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमर अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बोनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित जागृति बोल आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बोन हूँ था का
2: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
3: ओ अंजलि बोन एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
2: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
3: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
2: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनो ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: मारू नाम गिल्ली है ने मुं मुन्नी नी मोटी बोन हूँ एक दाड़ो स्कूल थे कि आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी तो मु हमजी के ने पानी नी तर लागी रही है तो मु दूड़ी ने बा कने गई ने कीधू कि बाबा मुन्नी ने तर लागी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे बाए हफ्तिंग ना कही दीदू ने मने की दू कि 100 महीना हुदी मुन्नी केवल इनी माँ नो दूधस पिएगा ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदू कि 100 महीना हुदी तने केवल माँ नो दूधस पीवू है
5: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।